तिन ही जैसी थी रहा जप जप रे मुरार। अवगुणी भरपूर है गुण पीवस्ते नाल, विण सगुर गुण ना जापनी जितिर शब्द ना करे विचार। लस्करिया कर संभले आए वजो लिखाए, तार कमावे सिर धनी लाहा पल्ले पाए। लाभ लो बुरियाईया छोड़े मनो विसार, गड़दोई पासा की कदे न आवे हार। चाकर कहिए खसम का सोए उत्तर दे, वजो गुआए अपना तख्त न बैसे से। प्रीतम हथ वडियाईया जय पावे तय दे, आप करे किसे आखिए आवर ना कोए करे। बीजो सूजे को नहीं बहे दुलीचा पाए, नरक निवारण नरे नर साचो साते नाए। वन त्रिन टूणत फिर रही मन में करो विचार, ला रतन बहुमान की प्रगुर हाल भंडार। ऊत महुमा प्र मिले एक मन एक पाए, नानक प्रीतम रस मिले लहा लय प्रथाए। रचना राज जिन रची जिन श्रेया आकार, गुरमुख बेअंत ते आई गए अंत न पारा वार। अड़ाड़े रूड़ा हर जी सोई, ते बिन राजा अवर न कोई। अड़ाड़े गारड़ तुम सुनो हर वसे मन माहे, गुर प्रसाद दी घर पाईगे मत को परम कोलाहे। सो साओ साचा जिस हर तनरास, गुरमुख पूरा तेस सबास। रूड़ी बाणी घर पाया गुर सब्जी विचार, आप गया दो कटिया हर वर पाया नार। सोई ना रूपा संची है तान काचा विकसार, साओ सदाए संज तान दुबदा होए कुवार। सत्यारी सच संचया ताचो नाम अमोल, हर निर्मायल उजलो पस साची सच बोल। साजन मीत सुजान तू तू सरवर तू हंस, साचो ठाकुर मानवस हो बलिहारी तिस। माया ममता मोहनी जिन कीती सुजान, बिखिया अमृत एक है बूझे पुरख सुजान। खिमा बिहूने खप गए खून लख असंख, गणतन आवे क्यों गणी खाप खाप मोए बसंख। कदम पछाणे अपना फूले बंद न पाए, तद मैली खरा तू खिमा सच सुख पाए। खर्च खरा तन ध्यान तू आपे वसे शरीर, मन तन मुख जापे सदा गुण अंतर मन तीर। होमे खपे खपाए सी बीजो वस विकार, जंत उपाय विच पायन करता अलग अपार। सृष्टे प्यो न जाने कोय सृष्टा करे सुने चो होय, संपे को ईश्वर त्याई है संपे पुरब लिखे की पाई है। संपे कारण चाकर चोर संपे साधन चाले होर, बिन साचे नी दरगे मान हर पीवे छुट्टे निदान। हेरत हेरत हे सखी होए रही हैरान, हो करती मैं मोई सद रवे मन ज्ञान। हार डोर कंकन कणे तरथा की सीगार, मिल प्रीतम सुख पाया सगल गुणा गल हार। नानक गुरमुख पाई गए हर सुप्रीत प्यार, हर बेन किन सुख पाया देखो मन विचार। हर पढ़ना हर बुझना हर सो रखो प्यार, हर जपी हर त्याई है हर का नाम आधार। लेख न मिटी हे सखी जो लिखिया करतार, आपे कारण जिन किया कर कृपा पगतार। करते खत वडियाईया बूझो गुर विचार, लिखिया फेर न सकीए ज्यो भावी त्यो सार। नदर तेरी सुख पाया नानक शब्द विचार, मनमुख फूले पचमुए उबरे गुर विचार। जे पुरख नदर न आवई तिसका क्या कर कहे आ जाए, बलिहारी गुर अपने जिन हिरदे दिता दिखाए। पांदा पढ़िया आखिए विद्या विचरे सहे सुपाए, विद्या सो देता तलह राम नाम लिवलाए। मनमुख विद्या बिकरदा बिख खट्टे बिख खाए, मूर शब्द न चीनई सूझबूझ न काए। पांदा गुरमुख आखिए चाटड़िया मत दे, नाम संभालो नाम संग्रहो ला जग में ले। सची पट्टी सच मन पढ़ गए शब्द सोसार, नांग सो पढ़िया सो पंडित बीना जिस राम नाम गल हार। राम कली महला पहला सिद्ध गोष्ट एक ओ अंकार, सदगुर प्रसाद सिद्ध सभा कर आसन बैठे संत सभा जयकारो। इस आगे रहे रास हमारी साचा अपर अपारो, मस्तक कार तरी तिस आगे तन मन आगे देओ। नानक संत मिले सच पाइये सहज पाए जस लेओ, क्या पविये सच सूचा होए साध सब मुक्त न कोई रखाओ। कौन तुम्हें क्या नाओ तुम्हारा कौन मार्ग कौन सुवाओ, साज को अरदास हमारी हाँ संत जना बल जाओ। कहे बैसो कह रही ये बाले कहे आवो कहे जाहो, नानक बोले सुन बैरागी क्या तुम्हारा राहो। कड़ कड़ बैस निरंतर रही है चाले सतगुर पाए,
ਸਹਿਜ ਆਏ ਹੁਕਮ ਸਦਾਏ, ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਰਜਾਏ, ਆਸਨ ਬੈਸਨ ਥਿਰ ਨਾਰਾਇਣ, ਐਸੀ ਗੁਰਮਤ ਪਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੇ ਆਪ ਛਾਣੇ, ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਸੁਮਾਏ, ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਗਰ ਦੁੱਤਰ ਕਹੀਏ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਪਾਈਏ ਪਾਰੋ, ਚਿਰਪੜ ਬੋਲੇ ਔਦੂ ਨਾਨਕ, ਦਿਓ ਸੱਚਾ ਵਿਚਾਰੋ, ਆਪੇ ਆਖੇ ਆਪੇ ਸਮਝੇ,

मन जा गोटी सत संतोख संजम है नाल नानक गुरमुख नाम समाल कमन सो गुप्ता कमन सो मुक्ता कमन सो अंतर बहार जुगता कमन सो आवे कमन सो जाए कमन सो तिरफुन रहा समाए घट घट गुप्ता गुरमुख मुक्ता अंतर बहार शब्द सो जुगता मन मुख बिन से आवे जाए नानक गुरमुख साज समाए क्यों कर बादा सरपन खद क्यों कर खोया क्यों कर लादा क्यों कर निर्मल क्यों कर अंधियारा क्यों तत् विचार ऐसो गुरु हमारा दुर्मत बादा सरपन खद मनमुख खोया गुरमुख लादा सतगुर मिले अंधेरा जाए नानक हो मैं मेरे।

हुक्मे रहे समाई पूरे गुरते साज कमावे गात मित सब दे पाई आद कौ बिस्माद विचार कथियले सुन निरंतर वास लिया अकल्पत मुद्रा गुर ज्ञान विचारियले धड़कड़ साचा सर्ब जिया गुर बचनी अवगत समाइये तत निरंजन सहज लहे नानक दूजी कारना करनी सेवे सिख सो खोज लहे हुक्म बिस्माद हुक्म पछाणे जी जुत सा जाने सोई आप मेट निरालम होवे अंतर साच जोगी कहिए सोई अवगतो निर्मायल उपजे निर्गुण ते सरगुण थिया सदगुर परचे परम पद पाईए साचे शब्द समाए लिया एक को सच एका जाने होमे दूजा दूर किया सो जोगी गुर शब्द पछाणे अंतर कमल प्रकाश थिया जीवित मरे ता सब कुछ सूझे अंतर जाने सर्ब दया नानक ताको मिले वडाई आप शाने सर्ब जिया साचो उपजे साच समावे साचे सूचे एक मया झूठे आवे ठवर ना पावे दूजे आवा गौण पया आवा गौण मिटे गुर शब्दी आपे परखे बगसलया एक आवेदन दूजे व्यापी नाम रसायन विसरया तो बुझ जिस आप बुझाए गुर कै सब सो मुक्त पया नानक तारे तारण हारा होमे दूजा पर हरिया मनमुख फूले जम की कान पर कर जो है हाने हान।

तू सच्ची नाई। श्लोक कबीर कसौटी राम की, झूठा टिके न कोए, राम कसौटी सो सह, जो मर्जी वा होए मोहल्ला तीजा। क्यों कर यो मन मारिए, क्यों कर मृतक होए, कया शब्द न मानई, होमे छड़े न कोए, गुर प्रसादी होमे छुट्टे, जीवन मुक्त सो होए, नानक जिसनु बख्शे तिस मिले, तिस बिघन ना लागे कोई मोहल्ला तीजा। जीवत मरना सबको कहे, जीवन मुक्त क्यों होए, पय का संजम जे करे, दारू पाओ लाए, अनदिन गुण गावे सुख सहजे, बिग पवजल नाम तरे, नानक गुरमुख पाईए, जा को नदर करे पौड़ी, दूजा पावर चायोन, त्रै गुण वरतारा, ब्रह्मा विष्णु महेश उपायन, हुक्म कवावन कारा, पंडित पढ़ दे जोत की, ना बूझे बिचारा, सब कुछ तेरा खेल है, सच सृजनहारा, जिस पावे तिस बख्श लहे, सच शब्द समाई।

परम में पूला सब तीर्थ गह, ओ तपा कैसे परम गत लह, गुर प्रसादी को सच कमावे, नानक सो तपा मोखंतर पावे महला तीजा, सो तपा ये ओ तप का ले, सदगुर नु मिले शब्द समाले, सदगुर की सेवा यो तप प्रवान, नानक सो तपा दर्घ पावे मान पौड़ी, रात दिन उपायन संसार की वर्तन, गुरमती कर चानना आनेर बिनासन, हुक्मे ही सब साजियन रव्यासा वण त्रेण, सब कुछ आपे आप है गुरमुख सदा हर पान, सब दे ही सोजी पई सच्चे आप बुझाई, वाहो वाहो सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। श्लोक महला तीजा, अभ्यागत ए न आखियन जिनके चित में परम, ते दे दिते नानका ते हो जेगा तर्म, आपए निरंजन परम पद ताका भूखा होए, इसका भोजन नानका विरला पाए कोए। महला तीजा, अभ्यागत ए न आखियन जे पर कर भोजन करेन, उदरे कारण अपने बैले पेख करेन, अभ्यागत से ही नानका जी आत्म गौन करेन, पाल लहन सो अपना निरकर रहन करेन, पौड़ी अंबर तरत बछोड़ेन, वे सच्चा असराओ कर दर सबो सच है, जिस विच सच्चा नाओ तब सच्चा हुक्म वर्तदा, गुरमुख सच सुनाओ सच्चा आप तगत सच्चा, बै सच्चा करे न्याओ तब सचो सच वर्तदा, गुरमुख अलख लखाई वाहो वाहो सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। श्लोक महला तीजा, रैनायर महाय अनंत है कूड़ी आवे जाए, भाणे चले अपने बहुती लय सजाए, राय नायर में सब किश है कर्मी पल्ले पाए, नानक नौनद पाई है जे चले तसे रजाए। महला तीजा, है जे सतगुर ना सेवे हो विच होमे जन्म विनाश, रसना हरसना चखे हो कमल न होयो परगास, बिख खादी मनमुख मोआ माया मोहे विनाश, एक सहर के नाम वेण त्रिग जीवन त्रिगवास, जा आपे नदर करे पर सच्चा ता हो वेदा सुनदास, ता अनदन सेवा करे सदगुरु की कभे न छोड़े पास, जो जल में कमल अलिप तो वर्त है त्यों विच्चे गिरे उदास, जन नान करे कराया सबको क्यों पावे तिब हर गुण तास, पौड़ी छत्ती जुग गुबार सा आपे ग्रंथ कीनी, आपे सृट सब साजियन आप मत दीनी, सिमरत सास्त साजियन पाप पुन ग्रंथ गणीनी, जिस बुझाए सो बुझसी सच्चे शब्द पतीनी, तबे आपे आप वर्तदा आपे बक्स मिलाई, वाहो वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। श्लोक महला तीजा, यो तन सबो रत है रत बिन तन न होए, जो सह रत अपने तेन तन लोभ रत न होए, पय पय तन खीन होए लोभ रत विचो जाए, ज्यों बैसंतर तात सुध होए त्यों हरका पाओ दुर्मत मैल गवाए, नानक तेजन सोने जो रते हारंग लाए। महला तीजा, राम कली रामन वसया ता बनया सीगार, गुर के शब्द कमल बिरसया ता सौंपया भगत पंडार, परम गया ता जागया चूका अज्ञान अंधार, तेसनु रूप अत अगला जिस वर नाल प्यार, सदा रवे तेरे अपना तोबावंती नार, मनमुख सीगार ना जाननी
जसन जन्म सवहार बिन घर भगती सीगार करे नित जम्मे होए खुआर सहे सारे विच सोभ ना पाए नी अगे जे करे तो जाने करतार नानक सच्चा एक है दो जगह संसार चंगे मंदे आप लायन सो करन जे आप कराए करतार महला तीजा बिन सदगुर सेवे सांत न आवई दूजी ना ही जाए जे बो तेरा लोचिए बिन कर्मा पाया ना जाए अंतर लोभ विकार है दूजे पाए खुवाए तिन जम्मण मरण ना चुकई हौमे विच दुख पाए जिनी सतगुर सिउ चित लाया सो खाली कोई ना है तिन जम की तलब ना हो गई ना ओए दुख सुखा है नानक गुरमुख उबरे सच्चे शब्द समागे पौड़ी आप अलिप्त सदा रहे होर तंदे सब ताव है आप निचल अचल है होर आव है जाव है सदा सदा हर त्याई है गुरमुख सुख पाव है निकर वासा पाई है सच सिफत समाव है सच्चा गैर गंभीर है गुर शब्द बुझाई वाहो वाहो सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई सलोक महला तीजा सच्चा नाम त्याए तू सबो वरते सच नानक हुक्मे जो बुझे तो फल पाए सच कथनी बदनी करता फिरे हुक्म ना बूझे सच नानक हर का पाणा मन्ने तो भगत होए विण मन्ने कच्चन कच महला तीजा मन मकबोल ना जाननी ओना अंदर काम क्रोध अंकार ओए थाओ कथाओ ना जाननी उन अंतर लो विकार ओए अपने स्वाए आए भय गल्ला करे ओ ना मारे जम जिंदार अगे दरगे लेखे मंगे मार खुआर कीचे कूड़ियार ए कूड़े की मल क्यों उतरे कोई कड्डो यो विचार सतगुर मिले त नाम दड़ाए सब केल कट्टन हार नाम जपे नाम आराध ते जन को करो सब नमस्कार मलकूड़ी नाम उतारियन जप नाम हुआ सचियार जन नानक जिस दे ए चलत है सो जीवो दे मनहार पौड़ी खुद जे वड़दाता नाहे किस आग सुनाई है गुर प्रसादी पाए जिथो होमे जाइए रस का सादा बार सच्ची वडे आईए जिसनु बख्शे तिस दे आप लय मिलाइए तट अंतर अमृत रख्यों गुरम किसे पे आई वाहो वो सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई सलोक महला तीजा बाबाणियां कहानियां पुत सुपुत करेन जे सतगुर पावे सो मन लैन से ही कर्म करेन जाए पुछो सिमरत सास्त प्यास सुख नारद बचन सब सृष्ट करेन सच्चे लाए सच लगे सदा सच समालेन नानकाए से प्रवान पए जे सगले कुल तारेन महला तीजा गुरु जिना का अंगला सिख पी अंधे कर्म करेन ओए पाणे चलन अपने निर झूठो झूठ बोलेन कूड़ कु सत कुमांदे पर निंदा सदा करेन ओए आ डुबे पर निंदगा सगले कुल डोबेन नानक जित ओए लाए तित लगे ओए बपड़े क्या करेन पौड़ी सब नदरी अंदर रखद जेती सिट सब कीती एक कूड़ कु सत लायन मनमुख विभूति गुरमुख सदा त्याई है अंदर घर प्रीति जिन को पोते पुन है तिन वात से पीति नानक नाम त्याई है सच सिफत सुनाई
वाहो वह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। श्लोक महला पहला सती पाप कर सत कमाहे गुर दीख्या कर देवन जाहे। स्त्री पुरख खटे पाओ पावे आवो पावे जाओ। शास्त्र वेद न माने कोय आपो आपे पूजा होए। काजी होए के भय न्याय फेरे तस्बी करे खुदाए। वड्डी लै के हक गवाए जे को पुछे ता पढ़ सुनाए। तुरक मंत्र कान रे सुमावे लोक मुहावे चाड़ी खावे। चौका दे के सुच्चा होए ऐसा हिंदू वेखो कोए। जोगी गिरही जटा बेपूत आगे पाछे रोवे पूत। जोग न पाया जूत गवाई कित कारण सिरशाई।

सुंदर बचन तुम सुनो शबीली, पिरतेड़ा मन साधारण, दुर्जन से तीन हो रचायो, दस विखा मैं कारण, ऊनी नाही चूनी नाही, नाही किसे विहूनी, फिर शहर शपीला छड गवायो, दुर्मद कर्म विहूनी, ना हो फुली ना हो चुकी, ना मैं नाही दूसा, जित हो लाई तित हो लगी, तू सुन सच संदेशा, साई सुहागण साई भागण, जय फिर कृपा तारी, फिर अवगुण के सब गवाए, गल से ती लाए सवारी, कर्महीन तन करे बेनंती, कद नानक आवे वारी, सब सुहागण माणे रलिया, एक देवो रात मुरारी, महला पंजवां, ताहि मन तू डोलत, हर मनसा पूर्ण हार, सतगुर पुरख ते आए तू, सब दुख वसारण हार, हर नामा आराध मन, सब किल विख जाए विकार, जिन को पूर्व लिखिया,

मन तन हृदय सिमर हर, आड़ पैर गुण गाओ, उपदेश सुनो तुम गुर सिखो, सच्चा ए सुआओ, जन पदार्थ सबर होए, मन में लायो पाओ, सूग सहज आनंद कणा, प्रभ जपत्या दुख जाए, नानक नाम जपत सुख उपजे।

पौड़ी। वड़ियाई सच्चे नाम की हो जीवा सुन सुने, पशु प्रेत अज्ञान उधारे एक खने। दिन सरैन तेरा नाव तदासा जापिए, तृष्णा भुख विकराल नाए तेरे त्रापिए। रोग सोग दुख वंजे जिस नाऊ मन वसे, तिसे प्राप्त लाल जो गुर शब्दी रसे। खंड ब्रह्मांड बेअंत।

जब तब संजम गुरमुख भोगी रहाओ, बुद्ध बिपूत चढ़ावो अपनी, सिंगी सुरत मिलाई, कर बैराग फिरो तन नगरी।

गोविंद हम ऐसे अपराधी जिन पर जियो पिंड था दिया इसकी भाव भगत नहीं साधी रहा पर तन पर तन पर ती निंदा पर अपवाद ना छूटे आवा गवन होत है फुन फुन यो प्रसंग न टूटे जे कर कथा होत हर संतन एक निमखना की नो मैं फेरा लंपड़ चोर दूत मतवारे तीन संग सदा बसेरा काम क्रोध माया मद मस्तर ए संपे मोह माही दया धर्म अर गुर की सेवा ए सुपनं तरनाही दीन दयाल के पाल दमुदर भगत बछल पैहारी कहत कबीर पीर जन रखो हर सेवा करो तुम्हारी जे सिमरन होए मुक्त द्वार जाए बैकुंठ नहीं संसार निरपो के कर बजावे तूर अनगत बजे सदा भरपूर ऐसा सिमरन कर मन माहे बिन सिमरन मुक्त कद नाहे रघाव जे सिमरन नाही ननकार मुक्त करे उतरे।

नीले गगन मझारंग बेदियले चक्कर पुहंगा पेटियले राय निसंगा टूकियले मोह मयास सद कीनो सूर गेरास जाब कुंभक परपुर लीना ते बाजे अनहद बीना भगते बाक शब्द सुनाया सुनते सुर मन बसाया कर करता उतस पारंग कहे कबीरा सारंग चंद सूरज दो ज्योत स्वरूप ज्योति अंतर ब्रह्म अनूप कर ज्ञानी ब्रह्म विचार।

राखी अले मन राम नामा बेदी अले जैसे कनक कला चित मांडी अले रघाओ आनी ले कुंभ पराई ले उदक राजकुमार पुरंदरीए

ऐसो दान नित नित है कीजे, आत्म जो निर्मायल कीजे, आप बराबर कंचन दीजे, राम नाम सर तऊ न पूजे, मने न कीजे रोस, जमे न दीजे दोष, निर्मल निर्वाण पद कीन लीजे, जस रस राय नंद, राजा मेरा राम चंद, परम में नामा तत् रस अमृत पीजे, राम कली बाणी सर्वदास जी की एक ओंकार, सतगुर प्रसाद पढ़िए गुनिए नाम सा सुनिए, अनपो पाओ न दर्शे, लोहा कंचन हिरन हुए कैसे, जो पार सहे ना परसे, देव संसे गांठ ना छूटे, काम क्रोध माया मद मस्तर, इन पंचो मिल लूटे रगा, हम बड़ कब कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुनी सूर हम दाते, एवद कभे ना नासी, कौरव दास सबे नी समझस, भूल परे जैसे बौरे, मुए आधार नाम नारायण, जीवन प्राण तन मोरे, राम कली बाणी बेणी जियो की एक ओंकार, सतगुर प्रसाद इड़ा पिंगला और सुखमना, तीन बसे इकठाई, बेणी संगम तय प्राग, मन मज्जन करे तताई, संतो तहा नरंजन राम है, गुरगम चीने बिरला कोय, तहा नरंजन रमैया होए रघाव, देव स्थाने क्या निशानी, ते बाजे शब्द अनाहद बाणी, ते चंदना सूरज पौन ना पानी, साखी जागी गुरमुख जानी, उपजे ज्ञान दुरमत शीजे, अमृत रस गगनंतर पीजे, इस कला जो जाने पेओ, पेटे तास परम गुरदेव, दसम द्वारा अगम अपारा, परम पुरख की काटी, ऊपर हाट हाड़ पर आला, आले पीतर ताती, जाग तरह सो कभू ना सोवे, तीन तिलोक समाध पलोवे, बीज मंत्र ले हिरदे रहे, मनुआ उल्ट सुन में गहे, जाग

प्रसामी तुम धुट तारे हरण के नट मोहल्ला चौथा मेरे मान जप हर हर राम रंगे हर हर कृपा करी जगदीशर हर त्यायो।

उमरे गुण प्रभु कह न सके हम तुम वड वड पुरख वडगे जन नानक को दया प्रवतारो हम सेवो तुम जन पगे नट मोहल्ला चौथा मेरे मान जप हर हर नाम मने जगन्नाथ कृपा प्रतारी मत गुरमत नाम बने रघाओ हर जन हर जस हर हर गायो उपदेश गुरु गुर सुने केल भग पाप नाम हर काटे जिव खेत किसान लुने तुमरी उपमा तुम ही प्रभु जान हो हम कह न सके हर गुने जैसे तुम तैसे प्रभु तुम ही गुण जानो प्रभु अपने माया फास बंद बो बंदे हर जप्यो खुल खुलने ज्यो जल कुंचर तनुए बंदेओ हर चेत्यो मोख मुखने स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम खोजो जुग जुगने तुमरी था पाई नहीं।

क्या पावे मन प्यास बौद्ध दर्शावे रहाव सोई ज्ञानी सोई जन तेरा जिस ऊपर रुच आवे कृपा करुष पुरख विधाते सो सदा सदा तुल त्यावे कवन योग कवन ज्ञान त्याना कवन गुणी रीझावे सोई जान सोई निज भगता जिस ऊपर रंग लावे साई मत साई बुद्ध स्यानप जित निमक न प्रभिसरावे संत संग लगे सुख पायो हर गुण सदगी गावे देखो अचरज महा मंगल रूप किस आन नहीं दिष्टावे कहो नानक मोर्चा गुर लायो।

सदगुर ज्ञान मजन गए नीको मिल कल मल पाप उतारे रघाओ। संगत का गुण बहुत अधकाई परसुआ गण उधारे परस न परस भय कुबजा कहो लय वैकुंठ सुधारे।

सुनावे जो बोले सो ना बिचारे। सत संगत मिले ता दृढ़ता आवे हर राम नाम निस्तारे। जब लग जियो पिंड है साबत तबला किशना संहारे। जब कर मंदर आग लगानी कर कूप कडे पनगारे। सागत से मन मेल ना करियो जिन हर हर नाम बिसारे। सागत बचन विश्वा जो डसिए तज सागत परे परारे। लग लग प्रीत बहु प्रीत लगाई लग साधु संग सवारे। गुर के बचन सत सत कर माने मेरे ठाकुर बहुत प्यारे। पूर्व जन्म परचून कमाए हर हर हर नाम प्यारे। गुर प्रसाद

मटक मटक चल सखी सहेली मेरे ठाकुर के गुण सारे गुरमुख सेवा मेरे प्रापाई मैं सदगुर अलख लखारे नारी पुरख पुरख सब नारी ताबेको पुरख मुरारे संत जिना की रेन मन पाई मेरे हर जन घर निस्तारे ग्राम ग्राम नगर सा फिरे अंतर घर जन पारे सरदा सरदा उपाय मिलाए मोको हर गुर गुर निस्तारे पावन सूत सब नीका करे सतगुर शब्द विचारे निज कर जाए अमृत रस पिया बिन नैना जगत निहारे तौ गुण ईस बन नहीं सको तो मंदिर हम निक कीरे नानक कृपा करो गुरु मिलो मैं राम जपत मन धीरे।

प्रहलाद जन हर नाग पकड़िया, हर राख लियो तराया, हर चेतरे मन महल पावन सब दुख पंजन राया। ओ जन्म मरने वार ठाकुर हर गुरमति प्रपाया, हर पतत पावन नाम स्वामी ओ भगत पंजन गाया। हर हार हर उतारियो जन नानक नाम समाया, माली गौड़ा मोहल्ला चौथा जप मन राम नाम सुखदाता, सत संगत मिल हर साध आया, गुरमुख ब्रह्म पछाता रखाओ, वडभागी गुर दर्शन पाया, गुर मिले घर प्रवजाता, दुर्मत मैल गई सब नीकर, हर अमृत हर सरनाता, तन तन साध जिनी घर प्रापाया, तिन पूछो घर की बाता, पाए लगो निद करो जुदरिया, हर मिल लो कर्म वेदाता, लिलाड़ लिखे पाया गुर साधु, गुर बचनी मन तन राता, हर प्र आए मिले सुख पाया, सब केलभ पाप गवाता, राम रसायन जिन गुरमत पाया, तिनकी उत्तम बाता, तिनकी पंक पाये वडभागी, जन नानक चरण पराता, माली गौड़ा मोहल्ला चौथा, सब सिद्ध साधक मुनजना, मन पावनी घर त्यायो, अपरम्परो पार ब्रह्म स्वामी, हर अलख गुरु लखायो, रहाओ, हम नीच मध्यम कर्म किए, नहीं चेत्यो हर रायो, हरियान में लियो सदगुरु, खिन बंद मुक्त करायो, प्रमत के तुर लिखया, गुरमती घर लिवलायो, पांच शब्द दर गए बाजया, हर मिलो मंगल गायो, पतत पावन नाम नर घर, मंद पागिया नहीं पायो, ते गर्भ जो नी गालिये, ज्यो डोन जरे गलायो, मत दे घर प्र अगम ठाकुर, गुर चरण मन में लायो, हर राम नाम में रहो लागो, जन नानक नाम समायो, माली गौड़ा मोहल्ला चौथा, मेरा मन राम नाम रस लागा, कमल प्रगास पया गुर पाया, हर जप्यो प्रम पो पागा रगाओ, पय पाए भगत लागो मेरा हीरा, मन सोयो गुरमत जागा, केल बिख खीन पय सांत आई, हर उतारियो वडभागा, मान मुख रंग कुसुंभ है कछुआ, ज्यो कुसुम चार दिन चागा, खिन में बिनस जाए परताप, दंड तरमरा एका लागा, सत संगत प्रीत साध अत गूढ़ी, जो रंग मजीठ बो लागा, ताया कापर चीर बो फारे, हर रंग न लहे सुपागा, हर चारो रंग मिले गुर शोभा, हर रंग चलू ले रंगा, जन नानक तिनके चरण पखारे, जो हर चरणी जन लागा, माली गौड़ा मोहल्ला चौथा, मेरे मान भाज हर घर नाम गोपाला, मेरा मातन लीन पया राम नामे, मत गुरमत राम रसाला, रहाओ गुरमत नाम त्याय गे हर घर, मन जपगे घर जपमाला, जिनके मस्तक लिखिया, हर मिलिया हर

रे मन टहल हर सुखसार, अवर टहलना झूठिया निर करे जम सिर मार रखाओ, जिन्ना मस्तक लिखिया ते मिले संगार, संसार पहु जल तारिया हर संत पुरख अपार, नित चरण सेवो साध के तज लोभ मोह बेकार, सब तजो दूजी आसड़ी रख आस एक निरंकार, एक परम फूले सागता बिन गुर अंध अंधार, तुर हो ना सो होया को ना मेटन हार, अगम रूप गोविंद का अनक नाम अपार, तन तन ते जन नानका जिन हर नामा उरतार, माली गौड़ा महला पंजवा राम नाम को नमस्कार, जास जबत होवत उदार, रहाओ जाके सिमरन मिटे तंद, जाके सिमरन छूटे बंद, जाके सिमरन मूर्ख चतर, जाके सिमरन कुले उधर, जाके सिमरन पौ दुख हरे, जाके सिमरन अबदा टरे, जाके सिमरन मुजद पाप, जाके सिमरन नहीं संताप, जाके सिमरन हृदय विगास, जाके सिमरन कवलादास, जाके सिमरन निध निदान, जाके सिमरन तरे निदान, पतत पावन नाम हरि, ओड भगत उधार करी, हर दास दासा दीन शरण, नानक माथा संत चरण, माली गौड़ा मोहल्ला पंजवा, ऐसो सहाई हर को नाम, साध संगत परिपूर्ण काम रखाओ, बूढ़ को जैसे बेड़ी मिलत, बूझत दीवक मिलत तिलत, जलत अग्नि मिलत।

कियो जास नाम दुख बिन से सो कियो विश्राम सगल निद हर घर घरे मुन जनता की सेव करे जाके कर सगले समागे जिते बिरता कोई नागे जी जंतर करे प्रतपाल सदा सदा सेव हो किरपाल सदा धर्म जाके दीबान बेमोहताज नहीं किश कान सब कुछ करना अपने आप अरे मन मेरे तू ताको जाप सा संत कहो बलिहार जस मिल होवे उधार नाम संग मन तने।

सब नगरी में एको राजा सबे पवित्र है थावा बाबा देवसा सच गावा जाते सहजे सहज समावा रगाओ बुरा पला किस आपस ते जाने ए सगल विकारा यो फरमाया खजम का हुआ वरत यो संसारा इंद्री तात सबल कहियत है इंद्री किसते हुई आपे खेल करे सब करता ऐसा बूझे कोई गुर प्रसादी एक लेव लागी दुबदा तदे बेनासी जुत पाना सो सतकर मानिया काटी जमकी फासी पंत नानक लेखा मांगे कवना या चूके मन अवमाना।

फिर हथ कताऊ ना पाए जोनी सब पवाइयन बिस्ता माए समाए वड़पागी गुर पाय पूर्व लिखया माए अनदन सच्ची भगत कर सच्चा लय मिलाए आपे सिरट सब साजियन आपे नदर करे नानक नाम वडियाईया जय पावे तय दे। मारू महला तीजा पिछले

दान आए, त्याग्यो सगला मान महत्ता, दास रेण शरणाए, कहो नानक हर मिल पर एक महा आनंद सुख पाए। मारू महला पंजवा, कवन थान तीरो है नामा, कवन बस अंकारा, कवन चेन सुन ऊपर सोयो,

साहिब सेव अपना चलते रखो चीत रहाओ, जैसी आज्ञा कीनी ठाकुर तिसते मुख नहीं मोरियो, सहज आनंद रखियो ग्रे पीतर उठ ओवाहू को दौरियो, आज्ञा मैं पूख सोई कर सूखा।

छोड़ जाए खिन पीतर ताको, ओ आको फिर फिर ताव सरे, अपने प्रभ को क्यों ना संहार सरे, बैरी संग रंग रच रसिया।

असाध रोग उपजो तन पीतर तरतन काहू टारियो प्रा बिसत महा दुख पायो यो नानक तत विचारियो मारू महला पंजवां चरण कम प्रवरा खे चीत हर गुण गावे नीता नीत इस बिन दूजा अवर न को आद मद अंत है सो संतन की ओट आपे आप रहाओ जाके वस है सगल संसार आपे आप आप निरंकार नानक गए सा।

परम मन का सतगुर सरणी जाए। कर्म जिसको तुरो लिखिया सोई कार कमाए, पाव लागा गोविंद सिंह काल पाई ताए। खेत मेरे जमया निखुट न कब हो जाए, पाया अमोल पदार्थ छोड़ न कत हो जाए। हो नानक सुख पाया तृप्त रहे आगाए, मारू मोहल्ला पंजवां फूटो आंडा परम का मने पयो परगास। काटी बेरी पगे ते गुर की नी बंद खलास, आमन जान रहे हो तब तक कड़ाहा बुझ गया। गुर शीतल नाम दियो रघाव, जब ते साधु संग पया तो छोड़ गए निगार। जिसकी अटक तिसे ते छुटी तो कहाँ करे कोटवार। चूका पारा कर्म का होए ने कर्मा, सागर ते कंडे चढ़े गुर कीने तरमा। सच थान सच बैठका सच स्वाव बनाया, सच पूंजी सच वखरो नानक कर पाया। मारू महला पंजवां बेद पुकारे मुगते पंडित,

दीनानाथ जगत पित माया प्रभ दयाल दुख दर्द बिदारण जिस पावे तिस ही निस्तारण अंध कूब ते काढ़न हारा प्रेम भगत होवत निस्तारा साध रूप अपना तन धारिया महा अगन ते आप उबारिया जब तब संजम इस ते किश नाही आद अंत प्रभ अगम अगाही।

सदगुर प्रसाद छोड़ सगल सियाण पां मिल साध त्याग गुमान अवर सब कुछ मिथिया रसना आराम राम वखान मेरे मन

माया कीमत जन्म सरायो, आराम भजन नहीं लागे ओ रखाओ। जम को डांड परे उसरी ऊपर, तब सोवत तय जागे हो, ता हो आपके पछताए, झूठ तो नाहन पागे हो। ए चिंता उपजी घट मैं, जब गुर चरणन अनरागे हो, सोफल जन्म नानक तब हुआ, जो प्रभु जस मैं पागे हो। मारू अष्टपदिया महला पहला, कार पहला एक ओंकार, सतगुर प्रसाद वेद पुराण कथे सुने, हारे मुनि अनेका, अड़सठ तीर्थ बहु कणा, प्रम था के पेखा, साचो साहिब निर्मलो।

कछ नहीं गुर पूरे पूरी मदकीन रहाओ। अवगुण सुबर गुण नहीं बिन गुण क्यों कर जाओ। सहज सब सुख उपजे बिन भागा तन नाहे। जिनके नाम ना मन बसे से बादे दुख सहाहे। जिन्नी नाम सारिया ते किताए संसार। आगे पासे सुख नहीं गाडे लादे शार। विछड़िया मेला नहीं तू कणु जमद्वार। अगे क्या जाना नाहे मैं भूले तू समझाए। भूले मार्ग

ते गुण विसर गए अपराधी, मैं बौरा क्या करो हरे, तू दाता दयाल सबे सेर, आहे निस दात सुमार करे, चार पदार्थ लय जग जन्मया, शिव शक्ति कर वास तरे, लागी पूख माया मुग जोग, मुग्द पदार्थ मोहे करे, कारण पलाव करे नहीं पावे, एत उद टूंडत थाग परे, काम क्रोध अहंकार वे आपे, कूड़ कुटां से प्रीत करे, खावे पूगे सुन सुन दिखे, पैर दिखावे काल करे, बिन गुरु शब्द न या पछाण है, बिन हर नाम ना काल टरे, जेता मोह में कर पूले, मेरी मेरी करते शीन करे, तान तन बिनस सहसे सहसा, फिर पछतावे मुख तूर परे, बिरद पया जोबन तन खिसिया, ताप कंठ बरुद्ध हो नैनो नीर टरे, चरण रहे कर कंपन लागे, साग त्राम ना हृदय हरे, तुरत गई काली हूं तौले, इसे ना पावे रखियो करे, विसरत नाम ऐसे दुख लाग गए, जाम मार सुमारे नरक खरे, पूर्व जन्म को लेखना मिटई, जन्म मरे का को दोष तरे, बिन गुर बाद जीवन हो मरना, बिन गुर शब्दे जन्म जरे, खुशी खुआर पै रस भोगण, भोगट कर्म विकार करे, नाम विसार लोभ मूल खोयो, सिर धर्म राए का दंड परे, गुरमुख राम नाम गुण गावे, जा को हर पर नदर करे, ते निर्मल पुरख अपरंपर पूरे, ते जग में गुर गोविंद हरे, हर सिमरहो गुर भजन सुमारहो, संगत हर जन पाओ करे, हर जन गुर प्रदान द्वारे, नानक तीन जन की रेन हरे, एक ओंकार सदगुर प्रसाद।

दुख दर्द कलेश बिन सहे, जिस बसे मन माहे, मृत नरक स्थान बिखड़े, बिखना पोहे ताहे, रिद्ध सिद्ध नवनिध जा कहे, अमृता प्रवाह आद अंते मद पूरन, ऊच अगम अगाह, सिद्ध साधक देव मुंजन, वेद करे उचार, तेमर स्वामी सुख सहज पुंच, नहीं अंत पारा वार, अनक प्राशित मिटे खिन महे, हृदय जप भगवान, पावना ते महापावन, कोड़ दान इसनान, बार बुद्ध सुध प्राण सर्वस।

तले उगाए बैसे हो, सरा मना रहे हो शरीर, मांस अगर नए व्यापे किने उतरे हो तीर, चंदन अगर कपूर लेपन

वेपरवाहे आप उपाए दान सुमाहे, आप दयाल दूर नहीं दाता, मिलया सहज रजाई हे। एक सोगी एक रोग वे आपे, जो कुछ करे सो आपे आपे, भगत पाव गुर की मद पूरी, अणगल शब्द लखाई हे। एक नंगे भूखे पवे पवाए, एक हड़कर मरे न कीमत पाए, गात आपगत की सार न जाने, बूझे शब्द कमाई हे। एक तीर्थ नाव है अन्न न खाव है, एक अग्न जलाव है देख पाव है, राम ना बिन मुक्त न होई, किद विद पार लंघाई है, गुरमत छोड़े उजड़ जाई, मन मुख राम न जपे अवाई, पाज पाज बूढ़े कूड़ कमाव है, कूड़ काल बैराई है, हुक्मे आवे हुक्मे जावे, बूझे हुक्म सो साच समावे, नानक साच मिले मन पावे, गुरमुख कार कमाई है, मारू महला पहला, आपे करता पुरख बेदाता, जिन आपे आप उपाय पछाता, आपे सदगुरे आपे सेवक, आपे श्रेष्ठ उपाई है, आपे नेड़े नाही दूरे, बूझे गुरमुख से जन पूरे, तिनकी संगत अहन सलाहा, गुर संगत ए वडाई है, जो जो संत पले प्रव तेरे, हर गुण गावे रसनर सेरे, उस्तत करे पर दुख दालद, जिन नाही चिंत पराई है, ओए जाग तरह है न सूते दिस है, संगत कुल तारे साज परिस है, कालमल मैल नहीं ते निर्मल, ओए रह भगत लिवलाई हे, बुझो हर जन सदगुर बाणी, यो जोवन सास गए दे पुराणी, आज काल मर जाई गे प्राणी, हर जप जब हृदय ते आई हे, छोडो प्राणी कूड़ कबाड़ा, कूड़ मारे काल उछाड़ा, शायद कूड़ पते मन होमे, दो मार्ग पते पचाई हे, छोड्यो निंदा तात पराई, पड़ पड़ दजे सातन आई, मेल स संगत नाम सलाह, आत्मराम सखाई हे, छोडो काम क्रोध बुरियाई, होमे तंद छोडो लंपटाई, सदगुर शरण परो ता उबरहो, क्यों तरिये पवजल पाई हे, आगे बेमल नदी अग्न बिख चेला, तिथे अवर न कोई जियो अकेला, पाड़ पड़ अग्न सागर दे लहरी, पड़ दजे मन मुक्ताई हे, गुर पे मुक्त दान दे पाने, जिन पाया सोई विद जाने, जिन पाया तिन पूछो पाई, सुख सदगुर सेव कमाई हे, गुर बिन उर्ज मरे बेकारा, जम सिर मारे करे खुवारा, बादे मुक्त नहीं नर निंदक, डूबे निंद पराई हे, बोलो साज पछाणो अंदर, दूर नहीं देखो कर नंदर, बिगन नहीं गुरमुख तर तारी, यो पवजल पार लंघाई है, देही अंदर नाम निवासी, आपे करता है अबनासी, ना जीव मरे न मारिया जाई, कर देखे सब दर जाई है, ओ निर्मल है नाही अंधियारा, ओ आपे तख्त बहे सत्यारा, शायद कूड़े बंद पवाई है, मार जन्म है आई जाई है, गुर के सेवक सदगुर प्यारे, ओए बैसे तख्त सो शब्द विचारे, तात लह अंतरगत जान है, तत संगत साच वडाई है, आप करे जन पितरा तारे, संगत मुद सो पार उतारे, नानक तिसका लाला गोला, जिन गुरमुख कर लिवलाई है, मारू महला पहला, एते जुग वरते गोबार है, ताड़ी लाई अपर अपारे, तुंदू काल निरालम बैठा, ना तद तंद पसारा हे, जो शती तने वरताए, जुत पाना तवे चलाए, तिसे श्रीक न दिसे कोई, आपे अपर अपारा हे, गुप्ते बुझो जोग चत आरे, घड़कड़ वरते उदर मझारे, जो जो एका एकी वरत है, कोई बूझे गुर विचारा हे, बिंद रक्त मिल पिंड सरिया, पौन पानी अग्नि मिल जिया, आपे चोज करे रंग महली, होर माया मोह पसारा हे, गर्भ कुंडल में उर्द त्यानी, आपे जाने अंतर जामी,
ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਤਨਾਮ ਸਮਾਲੇ ਅੰਤਰ ਉਦਰ ਮਝਾਰਾ ਹੈ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਜਗ ਆਇਆ ਸਿਵ ਸਕਤੀ ਕਰ ਵਾਸਾ ਪਾਇਆ ਏਕ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਪਿੜਹਾਰੇ

कंचन काया गुरमुख बूझे जिस अंतर नाम निवासी है। सच्चा चौका सुरत की कारा हर नाम पूजन सच आधारा। सदा त्रिवत पवित्र है पावन जित कड़ हर नाम निवासी है। हों तिन बलिहारी जो साचे लागे हर गुण गावे अनदिन जागे। साचा सुख सदा तिन अंतर रसना हर रस रासी है। हर नाम चेता अवर न पूजा एको सेवी अवर न दूजा। पूरे गोर सब सच दिखाया सच्चे नाम निवासी है। प्रम प्रम जोनी फिर आया आ भूला जा खसम भुलाया। हर जू मिले ता गुरमुख बूझे तीने शब्द अविनाशी है। काम क्रोध भरे हम अपराधी क्या मोल है बोले ना हम गुणना सेवा साधी। डुबदे पाथर मेल रहे हो तुम आपे सात नाम अविनाशी है। ना कोई करे न करने जोगा आपे करे करावे सो होएगा। आपे बक्सल है सुख पाए सदगी नाम निवासी है। यो तन धरती शब्द बीज अपारा हर साचे सेती वणज वापारा। सहतन जम्या तोट न आवे अंतर नाम निवासी है। हर जीव अवगुण आरे नू गुण कीजे आपे बक्सल है नाम दीजे। गुरमुख होवे सो पद पाए एकत नाम निवासी है। अंतर हर तान समझन होई गुर प्रसादी बूझे कोई। गुरमुख होवे सो तन पाए सदगी नाम निवासी है। अन लवाओ परम पुलाई माया मोहे सुध न काई। मानवक अंधे किशु न सूझे गुरमत नाम परगासी है। मानवक होमे माया सूते अपना करना संभाले अंत विगूते। पर निंदा करे वो चिंता जाले दुखे दुख निवासी है। आपे करते कार कराई आपे गुरमुख दे बुझाई। नानक नाम रते मन निर्मल नामे नाम निवासी है। मारू महला तीजा एको सेवी सदा थिर साचा। दूजे लागा सब जा काचा गुरमती सदा सच साला ही। साचे ही साच पतीजे हे तेरे गुण बहुते मैं एक न जाता। आपे लाए लाए जग जीवन दाता आपे बक्से दे वडियाई। गुरमत यो मन पीजे हे माया लहर शब्द निवारी। यो मन निर्मल होमे मारी।

आई गुरमुख होवे सो काया शुद्ध आपे आप मिलाएंदा काया विच टोटा काया विच लाहा गुरमुख खोजे वे परवाहा गुरमुख वणज सदा सुख पाए सहजे सहज मिलाएंदा सच्चा महल सच्चे पंडारा आपे देवे देवनहारा गुरमुख सालाहे सुख दाते मन मेले कीमत पाएंदा काया विच वस्त कीमत नहीं पाई गुरमुख आपे दे वडियाई जिद हट सोई वस जाने गुरमुख दे ना पछोताएंदा हर जीव सब मैं रहा समाई गुर प्रसादी पाया जाई आपे मेल मलाए आपे सबदे सहज समाएंदा आपे सच्चा शब्द मिलाए सबदे विचो परम चुकाए नानक नाम मिले वडियाई नामे ही सुख पाएंदा मारू महला तीजा आगम अगोचर वे परवाहे आपे मेहरवान अगम अथाहे अपड़ कोई ना सके तिसनु गुर शब्दी मेल आया तुदनु सेवे जो तुद पावे गुर के शब्दे सच समावे आन दिन गुण रवे दिन राती रसना हरस पाया शब्द मरे से मरण सवार है हर के गुण हिरदे उरतार जन्म सफल हर चरणी लागे दूजा पाओ चुकाया हर जू मेले आप मिलाए गुर के शब्दे आप गवाए आन दिन सदा हर भगती राते

गुण में गुणी समाया, ए जग में मोह है पासारा, मानव अज्ञानी अंध अंधारा, तंदे तावत जन्म गवाया, बिन नावे दुख पाया, कर्म होवे ता सतगुर पाए, होमे मैल शब्द जलाए, मान निर्मल क्या रतन चानन, अज्ञान अंधेर गवाया, तेरे नाम अनेक कीमत नहीं पाई, सच नाम हर हिरदे वसाई, कीमत कौन करे प्रातेरी, तू आपे सह।

नाम सुमाया, जो शरण परे तिस की पत रखे, जाए पूछो वेद पुराणी हे, जे सर सेवा लाए सोई चन लागे, पुर के शब्द परम पौ पागे, विचे ग्रेस धरे उदासी, ज्यो कमल रहे विच पानी हे, विच होमे सेवा थाए न पाए, जन्म मरे फिर आवे जाए, सो तप पूरा साई सेवा, जो हर मेरे मन पानी है, हों क्या गुण तेरे आखा स्वामी, तू सर्व जिया का अंतरजामी, हों मांगो दान तुझे पे करते, हर अनदिन नाम खानी है, किस ही जोर अहंकार बोलन का, किस ही जोर दीबान माया का, मैं हर बिन टेक तर अवर ना काई, तू करते राख मैं निमाणी हे, निमाणे मान करे तुद पावे, होर केती चख चख आवे जावे, जिनका पख करे तू स्वामी, तिनकी ऊपर गल तुद आनी हे, हर हर नाम जिन सदा त्याया, तिनी गुर प्रसाद परम पद पाया, जिन घर सेव्या तिन सो पाया, बिन सेवा पशो ताणी हे, तू सब में वरते हर जगन्नाथ, सो हर जपे जिस गुर मस्तक हाथ, हर की शरण पया हर जापी, जन नानक दाद साणी हे, मारू सोल हे महला पंजवा, एक ओंकार सदगुर प्रसाद, तला उपाय करी जिन तरना, गगन रहाया हुमे चरणा, अगन उपाय इधर मैं बाधी, हो प्रा राखे भाई हे, जी जंत को रिजक संभाहे, करण कारण समर्थ आपाहे, खिन मैं थापो थापन हारा, तोई तेरा सहाई हे, माद गर्भ में जिन प्रद पालिया, सास ग्रास हो संग समालिया, सदा सा जपगे सो प्रीतम, वड्डी जिस वड्डे आई हे, सुल्तान खान करे खिन कीरे, गरीब निवाज करे प्रामीरे, गर्भ निवारण सर्व सधारण, किस कीमत कही न जाई हे, सो पतवंता सो धनवंता, जिस मन वस्या हर भगवंता, माद पिता सुध बंध भाई, जिन ए सिरट उपाई हे, प्रव्याय सरना पौनी करना, साध संगत ने चोहे तरना, मन भज कर्म आराध्य करता, जिस नाही कदे सजाई हे, गुण निधान मन तन मैं रविया, जन्म मरण की जोन न पविया, दुख विनाश किया सुख डेरा, जहाँ तृप्त रहे आगाही है, मीत हमारा सोई स्वामी, थार्थ अंत अंतर जामी, सेवर सिमर पूर्ण परमेश्वर, चिंता ग्रंथ मिटाई है, हर का नाम कोडलख बाहा, हर से कीर्तन संग तन ताहा, ज्ञान खड़कर कृपा दीना, दूत मारे कर ताई है, हर का जाप जपो जप जपने, जीत आभो वसो कर अपने, लग चौरासी नरक न देखो, रसक रस गुण गाई हे, खंड ब्रह्मंड उदार नगारा, ऊच अथा अगम अपारा, जिसनों कृपा करे प्रभ अपनी, तो जन तसे ते आई हे, बंधन तोड़ लिगे।

तेरी, बिनस गई हो मैं मत मेरी, अंगीकार किया प्रभ अपने, जग में शोभ सुहाई है, जय जय कार्य पूजग दीसे, बल बल जाई प्रभ अपने ईसे, इस बिन दूजा अवर न दीसे, एका जगत सुबाई है, सत सत सत प्रभ जाता, गुर प्रसाद सदा मन राता, सेमर सेमर जीवे जन तेरे, एक अंकार समाई है, भगत जना का प्रीतम प्यारा, सबे उदाहरण खजम हमारा, सिमर नाम पुन्नी।

तूड़ मांगे मन मेरा, जिन विसरे नाही काहू बेरा। इनके संग परम पद पाई, सदा संगी हर नाल का। साजन मीत प्यारा सोई, एक दृढ़ाए दुर्मत खोई। काम क्रोध अहंकार तजाए, ते जन को उपदेश निर्माल का। तुद बिन नाही कोई मेरा, गुर पकड़ाए प्रभु के पैरा। होंबलिहारी सदगुर पूरे, जिन खंडिया परम अनाल का। सास सास प्रा बिसरे नाही, आड़ पैर हर हर को त्याई। नानक संत तेरे रंग राते, तू समर्थ वडाल का। मारू महला पंजवा, एक ओंकार सदगुर प्रसाद। चरण कमल हिरदे निधारी, गुरपूरा खिन खिन नमस्कारी। तान मन अर्प तई सब आगे, जग में नाम सुहावना। सो ठाकुर क्यो मनो विसारे, जियो पिंड दे सास सवारे। सास ग्रास समाले, करता कीता अपना पावना। जाते बिरता को नाही, आड़ पैर हर रख मन माही। साध संग पाच अचुत स्वामी, दरगे सोभा पावना। चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध, नाम निधान सह सुख नौ निध। सर्व कल्याण जे मन में चाह है, मिल साधु स्वामी रावणा। सात सिमरत वेद वकाणी, जन्म पदार्थ जीत पुराणी। ताम क्रोध निंदा पर हरिये, हरसना नानक गावना। जिस रूप ना रेखिया कुल नहीं जाती, पूर्ण पूर रहा दिन राती। जो जो जपे सो ही वड़ भागी, बौड़ ना जो नी पावना। जिसनु बिसरे पुरख बेदाता, जलता फिरे रहे निताता। अकिरत कणे को रखे ना कोई, नरक कोर में पावना। जियो प्राण तन तन जिन साजया, माद गर्भ में रख निवाजया। तेस्यो प्रीत शाट अनराता, काहू सिरे ना लावना। तार अनुग्रह स्वामी मेरे, कड़ कड़ वसे सबन के नेरे। हाथ हमारे कछुए नाही, जिस जनाए

चानन गुर मिले, दुख बिगजा ली ना ए पौड़ी, माया वेख ना पुल, तू मनमुख मूर्खा, चलद्या नाल ना चलई, सब झूठ दर्ब लखा, अग्ञानी अंत ना बूझई, सिर ऊपर जम खड़ग कलखा, गुर प्रसादी उभरे

जगत ना चुर हीड़े सच चौ नानक सचो सच पौड़ी गुरमुख आपे बख्सो हर नाम समाने आपे भगती लाए गुर शब्द निशाने सनमुख सदा सोने सचे दर जाने आयथे उथे मुक्त है जिन राम पछाने तन तन से जन जिन हर सेवया तिन हो कुरबाने सलोक महला पहला मैल कुचजी मरवड़ी काली मनो कसुद्ध जे गुण होवन ता पिर रवे नानक अवगुण मुंद महला पहला साज सील सा संजमी सा पूरी परवार नानक ऐन सदा भरी हिरके गेत प्यार पौड़ी अपना आप पछाणिया नाम निदान पाया किरपा करके अपनी गुर शब्द मिलाया गुर की बाणी निर्मली हर रस पी आया हर चनी चाखिया अनस ठाकर खाया।

सोधर सेवे हो ना कोए, ऐसा सदगुर लोड़ लहो जे जेवड अवर ना कोए, ते शरणाई छूटिए लेखा मंगे ना कोए, सच दृढ़ाए सच दृढ़ सच्चा ओ शब्द दे, हृदय जिरदे सच है तन मन पी सच्चा होए, नानक सच्चे हो मन्ने है।

पंडित जोत की वेद पढ़ा मुखचार नाखण मधे पूजिया अपने चज विचार मत सच्चा अखर भुल जाए चौंके पिटे ना कोए झूठे चौंके नानका सच्चा एको सोए महला तीजा आप पाए करे आप आपे नदर करे आपे दे वड़ियाइया कहो नानक सच्चा सोए पौड़ी कंटक काल एक है होर कंटक ना सूझे अफरियो जग मैं वर्तदा पापी स्यों लूझे गुर शब्दी हर भेदी है हर जाप हर बूझे सो हर शरणाई छुटी है जो मन स्यों जूझे मान विचार हर जाप करे हर दरगह सीजे सलोक महला पहला हुक्म रजाई साखती दरगह सच कबूल साहिब लेखा मंगसी

जगमय राम नाम हर निर्मला उरमैला सब आकार नानक नाम ना चेतनी होए मैले मरे गवार। महला तीजा दुख लगा बिन सेवे है हुक्म ने दुख जाए आपे दाता सुखे दा आपे देस जाए। नानक एवै जानिए सब केश तिसे रजाए पौड़ी हर ना बिना जगत है निर्थान बिन नावे तृप्त नाही दूजे परम भुलाया होमे दुख पाही बिन कर्मा किशु ना पाईए जे बहुत लोचाही आवे जाए जम्मे मरे गुर शब्द छुटाही आप करे किसे आखिए दूजा को नाही। सलोक महला तीजा इस जग में संती तन खटिया जिन्ना सदगुर मिलया प्रवे आए सदगुर सच दृढ़ाया।

माया साथ न चलई क्या लपटावे अंध गुर के चरण ते आए तू टूटे माया बंद पौड़ी भाणे हुकम मनायो भाणे सुख पाया भाणे सतगुर मेले ओन भाणे सच ते आया भाणे जेवड़ होर दात नाही सच आग सुनाया जिनको पूर्व लिखया तिन सच कमाया नानक तिस शरणागति जिन जगत उपाया।

कीमत कहे कौन तू सिजा सब संसार तू नायक सगल पौन तेरी कुदरत कोई ना जाने मेरे ठाकुर सगल राउन तू अपड़ कोई ना सके तू अविनाशी जग उदाहरण तू थापे चारे जुग तू करता सगल तरण तुद आमन जाना किया तुद लेप ना लगे त्रेण जिस होवे आप दयाल तिस लाभ है सदगुर चरण तू होर उपाय ना लभगी अविनाशी सिष्ट करण दखणे महला पंजवा जे तू वत्ते अंगणे अब तरत सुहावी होए एक सकंते भारी मैंडी वात न पुछे कोए महला पंजवा अबे टोल सुहावणे सो बैठा अंगण मल पही ना वञे बिरथड़ा जो कर आवे चल महला पंजवा सेज विशाई कंत कु किया हब सीगार इती मंझ ना समावई जेगल पैरा हार पौड़ी तू पार ब्रह्म परमेश्वर जोन ना आवगी तू हुक्मी साजे श्रेष्ठ साज समावगी तेरा रूप न जाई लखया क्यों तुझे ते आवगी तू सब मैं वरते आप कुदरत देखावगी तेरी पगत परे पंडार तोट न आवगी एहे रतन जवेहर लाल कीम ना पावगी जिस होवे आप दयाल तेस सदगुर सेवा लाभगी कदे न आवे तोट जो हर गुण गावगी दखणे महला पंजवा जाम पसी हठ मैं पिरी बिहिंजे नाल हब्बे दुख उलायमा

पौड़ी, जे जन तेरी भुख है ते दुख ना व्यापे, जिन जन गुरमुख बुझया सोचो कुंडी जापे, जो नर उसकी सरणी परे तिस कंबे पापे, जन्म जन्म की मल उतर गुर तूड़ी नापे, जिन घर पाना मनिया तिस सोग ना संतापे, हर जियो तू सवना का मित है सब जाने आपे, ऐसी शोभा जने की जेवड हर प्रताप, सब अंतर जन वरताया हर जन ते जापे, डखणे महला पंजवां जिन्ना पिछे हो गई से मैं पिछे पीर व्यास, जिन्ना की मैं आसड़ी तेना महिंजी आस, महला पंजवां गिल्ली गिल्ली रोडड़ी पौंदी भाव पव्याए, जो

ब्यास कहत है सुख को पूछो जाई, कहे कबीर आरामे रम छूटो नाए तब बूढ़े पाई। बने बसे क्यों पाई है जौला मनो ना तरे विकार, जे घर बन संसर किया ते पूरे संसार। सार सु पाई गे रामा रंग रवो आत्मा राम रहाओ, जटा पसम लेपन किया कहा गुफा मैं बास। मन जीते जग जीते जाते बिखिया ते हुए उदास, अंजन दे सवे कोई टुक चाहन माए बिडान। ज्ञान अंजन जे पाया ते लोइन परवान, कहे कबीर अब जानिया गुर ज्ञान दिया समझाए। अंतर्गत हर पेटिया अब मेरा मन कतहू ना जाए, रिद सिद्ध जाको फुरी तब काहू स्यों क्या काज। तेरे कहने की गद क्या कहो मैं बोलत ही बढ़ला।

कहत कबीर सुनो रे संतो, साध संगत तर जाएगा, अराग मारू बाणी रविदास जीओ की। एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद ऐसी लाल, तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा, माथे छदर तरे रखाओ, जाकी शोत जगत को लागे, ता पर तुही ठरे, नीचे ऊच करे मेरा गोविंद, काहू ते ना डरे, नाम देव कबीर तलोचन, सदना सहन तरे, तय रविदास सुनो रे संतो, हर जीव ते सवे सरे, मारू सुख सागर सुर तर चिंता मान, काम ते भजा के रे, चार पदार्थ अष्ट महा सिद्ध, नवृद कर तलता के, हर हर ना जब सरसना, अवर सब शाड बचन रचना रहाओ, नाना ख्यान पुराण वेद वेद, चौतीस अक्षर माही, व्यास विचार कहो परमार्थ, राम नाम सरनाही, सहज समाध उपात रहत होए, बड़े पाग लिव लागी, कहे रविदास उदास दास मत, जन्म मरण पै भागी, तुखारी संत महला पहला, बारे माहा एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद, तू सुन किरत करम्मा पुरब कमाया, सिर सिर सुख सहम्मा देसो तू पल, हर जना तेरी कागत मेरी, हर बिन कड़ी ना जीवा, प्रेबाज दुहेली गोए ना बेली, गुरमुख अमृत पीवा, रचना राज रहे निरंकारी, ब्राह्मण कर्म सुकर्मा, नानक पंथ निहाले सातन, तू सुन आत्म रामा, बाबी गा प्रयो बोले, कोकल बाणिया सातन सबर चोले, अंक समाणिया हरे अंक समाणी जापरा पाणी, सास हुआ नारे, नव कर थाप महल कर ऊचो, निज कर वास मुरारे, सब तेरी तू मेरा प्रीतम, निस

अमृत नाम रसन रस रसना गुर शब्दी रस पीजे विण नावे को संग न साथी आवे जाए कनेरी नानक लहा लय कर जाइए साची सच मत तेरी साजन देश विदेश।

पाए, नित देवे चढ़े सुवाया, अपरंपरे आपे था पुथापे, इस पावे सो होवे, नानक हीरा हीरे विद्या, गुण कै हार परोवे, गुण गुणे समान, मस्तक नाम निशानु, हसा समाया, चूका आमन जानु, सच साच पछा।

सुनो प्रीतम गुर शब्द मन समझावो तुखारी शांत महला चौथा एक ओंकार सदगुर प्रसाद।

पंथ चले गोर सतगुर संग सिखा प्रथम आए कुल खेत गुर सतगुर पुरब होआ खबर पई संसार आए त्रै लोआ देखण आए तीन लोक सुर नर मुनजन सब आया जिन परसया गोर सतगुरु पूरा तिन के किलबिख नास गवाया जोगी दिगंबर सन्यासी।

सगुरु पिछे जिन हर घर नाम ते आया, गुरबचन मार्ग जो पंथ चाले, तिन जम जागाती नेड़ न आया। सब गुरु गुरु जगत बोले, गुर के नाए लये, सब छुटक गया। द्वितीया जमन गए गोर, हर घर जपन किया, तृतीया आए सुरसरी।

पंच दास तीन दोखी एक मन अनाथ नाथ राख हो किरपाल रखाओ अनक जतन गमन करो खड़ कर्म जुत ध्यान करो उपाव सगल कर हारियो नह उठे बिकराल शरण बंदन करना पते पाव हरण हर हर हर हर एक तू ही दीन दयाल प्रभ चरण नानक आ

संग स्वामी हार गुण रसन बखान गोपाल दयाल गोविंद दमोदर निर्मल कथा ज्ञान नानक कहो हर कै रंग रंग हो चरण कमल संग ध्यान केदारा महला पंजवा हर के दर्शन को मन चाओ हर कृपा सत संग मिलावो तुम देवो अपनो नाओ रहाओ करो सेवा सतपुरख प्यारे।

हर बेन जन्म अकार सजात तद गोपाल आन रंग राजत मिथ्या पैरत खात रहाव तन जोबन संपय सुख भुगवे संग निभत मात मृत्युना देखर त्यो बावर द्रुम छाया रंग रात मान मोह महामद मोहत काम क्रोध के खात कर गए लियो दास नानक को प्रभ जी हुए सहात केदारा मोहल्ला पंजवा हर बिन कोई न चालत साथ दीना नाथ करना परस्वामी अनाथा के नाथ रखाओ सुध संपत दिखिया रस भोगवत नै निभत जम के पाथ नाम निधान गाओ गुण गोविंद।

सदगुर प्रसाद बिसर तनागे मन ते हरी आबे प्रीत महाप्रबल पही आन विखे जरी रघाओ बूंद का त्याग चातरक मीन रहत ना करी गुण गोपाल उच्चा रसना टेव ए परी महानाद कुरंक मोयो वेद तीखन सरी प्रचरण कमल रसाल नानक गांठ बांध थरी केदारा महला पनवा प्रीतम वस्त्रित।

संत संग हर चरण बोहित उदरते लय मोर गर्भ कुंट मैं जिने तारियो नहीं बिखे बन मैं होर हर सगत सरन सुमरत।

त्याग चलना सगल संपत काल सिर पर जान मिथन मोह दुरंत आसा झूठ सर परमान सत पुरख अकाल।

कछु आपै संत संग व्यवहार रखाओ कर अनुग्रह आप राखियो नहीं उपजतो बेकार जिस प्राप्त हुए सिमरै।

पत्र मैं तो पुरख बेदाता मार्ग प्राप का हर किया संतन संग जाता पुरख बेदाता घट घट नजर निहालिया जो सरणी आवे सर्व सुख पावे।

ठिया मटिया संग न कछ ले जाए रघाओ। देरी बैठी मेरी रोवे द्वारे लो संग माए, मा हट लग सब लोग कुटंब मेल, हंस अकेला जाए। वै सुत वै बित वै पुरपाटन, बौर न देखे आए। कहे त कबीर आराम की।

रूप रंग रहस नहीं साचा, क्यों छोड़े जम जालो, पानी हर जापो जन्म गयो, साच शब्द बेन कहो ना छूड़स, बिरता जन्म पयो रखाओ, तन में काम क्रोध को ममता, कठिन पीर अदफारी, गुरमुख राम जपो रस रसना, एन बेद तार तू तारी, बहरे कर्ण अकल पई होची, साबद सहज नहीं बूझया, जन्म पदार्थ मन मुख हारिया, बिन गुर अंध न सूझया, रहे उदास आस निरासा, सहज ध्यान बैरागी, परमत नानक गुरमुख छूड़स, राम नाम लेव लागी, भैरों महला पहला, ढूंढी चाल चरण कर खिसरे।

को दर कार कभू न जानस, एको दर्श त्यारा गुर प्रसाद परम पद पाया, नानक कहे विचारा भैरों महला पहला, अगली रैन सोबत गल फाही, दिन सजाल गवाया खेन पाल कड़ी नहीं प्रो जानिया, जिन एहो जग त्यो पाया मान रे क्यों छूटस दुख पारी, क्या ले आवस क्या ले जावस, राम जपो गुणकारी रगाओ ऊन दो कावल मान मुख मत होची, मन अंधे सिर तंदा काल विकाल सदा सिर तेरे बिन नावे गल फंदा, डगरी चाल नेत्र फुन अंधले साबद सुरत नहीं पाई, सातर वेद त्रै गुण गए माया अंधलो तंद कुमाई।

सीत गोविंद जन्मा सी परम भूले नरकरत कचरायण जन्म मरण ते रहत नारायण रघाओ कर पंजीर खवायो चोर ओ जन्म न मरे रे साकत ढोर सगल पराध देह लो रोनी सो मुख जलो जित कह ठाकुर जोनी जन्म न मरे न आवे ना जाए नानक का प्रव रहो सुमाए भैरों मोहल्ला पंजवा उठत सुखिया बैठ सुखिया।

को पेख ना बिना नर कही ना लेख बिन विद्या कहां कोई पंडित बिन अमरे कैसे राज मंडित बिन बूझे कहां मन ठहराना ना बिना सब जग बौराना बिन बैराग कहां बैरागी बिन हो त्याग कहां को त्यागी बिन बस पंच कहां मन चूरे ना बिना साध सड़गी चूरे बिन गुर दीख्या कैसे ज्ञान बिन पेखे को कैसो ध्यान बिन पै

दृष्ट रोग पच मोए पतंगा, नाद रोग खब गए कोरंगा, जो जो दिस सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सदगुर जोगी रहाओ। जेवा रोग मीन ग्रस आनो, बासन रोग पावर बिन सानो।

मन प्रगट पया नाम लयत पाप तन ते गया नाम लयत सगल पुरबाया नाम लयत अड़सठ मजनाया तीर्थ हमरा हर को नाम गुर उपदेशा तत् ज्ञान रघाओ नाम लयत दुख दूर पराना नाम लयत आत मूढ़ सो ज्ञाना नाम लयत प्रगट उजियारा।

रहाओ। जाकी दृष्ट दुख डेरा टहे, अमृत नाम शीतल मन गहे। अंग भगत जाके चरण पुजारी, सगल मनोरथ पूर्ण गारी। खिन में ऊने सुबर भरिया, खिन में सूके कीने हरिया। खिन में निथावे को दीनो थान, खिन में निमाने को दीनो मान। सब में एक रहा पर पूरा, सो जापे जिस सतगुर पूरा।

प्रवासा सगल त्याव है प्रभु गुणतासा जब जब अंध करे तेरे दासा सिमर नानक साचे गुणतासा भैरों महला पंजवां।

राम नाम रिद्ध दियो निवास सदा आनंद नाही किज सोग दुख दर्द न व्यापे रोग सब के तेरा तू करने हार पार ब्रह्म अगु अपार निर्मल शोभा अचरज बाणी पार ब्रह्म पूर्ण मन पानी जल थर महील रविया सोय नानक सब प्रवते होय भैरो महला पंजवां मन ताराता राम रंग चरणे सर्व मनोरथ पूर्ण करने आठ पैर गावत भगवंत सब गुर दीनो पूरा मंत सोवड़ पागी जिस नाम प्यार तिसके संग तरे संसार रहाओ सोई ज्ञानी जे सिमरे एक तो तनवंता जिस बुद्ध विवेक तो कुलवंता जे सिमरे स्वामी सो पतवंता जे आप शानी गुर प्रसाद परम पद पाया गुण गोपाल निरहिन ते आया टूटे बंधन पूर्ण आसा हर के चरण हृदमय निवासा कहो नांग जाके पूर्ण कर्मा सो जन आया प्रभु की सरना आप वित पाम सब कीने राम रसायन रसना चीने।

निमखन छोड सदगी साथ हर सा प्रीतम अवर न कोय सार समाले साचा सोए माल पिता सुत बंद नारायण आद जुगाद भगत गुण गायन इसकी धार प्रभु का मन जोर एक बिना दूजा

0: पार ब्रह्म का निवास, तिस गुर को सद करी नमस्कार, तिस गुर को सद जाओ बलिहार, सतगुर के चरण तोय तोय पीवा, गुर नानक जप जप स जीवा।
1: राग भैरों मोहल्ला पंजवा, पड़ताल कर तीजा।

भगत करो जन शरण तुम्हारी, नाओ विर माया नाओ मेरे पूंजी, तुम्हें छोड़ जानो नहीं दूजी, नाओ मेरे बंधपना।

आए। ऐसा ज्ञान विचार मना हर की ना सिमरो दुख पंजना। अहाओ जब लग सिंह रहे बन माहे तब लग बन फूले ही नाहे जब ही स्या

विद्या कोट सबे गुण कहे, तउ पार ब्रह्म का अंत न लह, बावन कोट जाके रुमावली, रामन सयना जयते शली, सहज कोट भो करत पुराण, दुर्योधन का मथिया मान, कंदर्व कोट जाके लवे न तरह, अंतर अंतर मनसा हरे।

असंख कोट अन पूजा करी। एक न पूस नामे हरि परमे नाम दियो इहो करना। अंत रूप तेरे नारायण पर थान पर दारा पर हरी। ताके निट बसे नर हरि जो ना

ऐसे ओए नरा परमत नाम दियो नाके बिना ना सोहे बत्तीस लखना दूध कटोरे गडवे पानी कपल गाए नामे दुए आनी दूध पियो गोबिंदे राय दूध पियो मेरो मन पतियाए नहीं ता कर को बाप रसाए रहाओ सोयन कटोरी अमृत भरी लै नामे घर आगे तरी एक भगत मेरे हिरदे बसै नामे देख नारायण हस्ते दूध पियाए भगत कर गया नामे घर का दर

भगत जना को देवरा फिरे, भैरों नाम देव जियो, कर दूजा एक ओंकार, सदगुर प्रसाद जैसी भूखे प्रीत अनाज, त्रिखाबंद जल सेती काज, जैसी मूड़ कुट

पद खोए, साचा सेवो साची बाणी, नानक नामे साच सुवाणी। बसंत महला तीजा, बिन करमा त परम भुलाई, माया मोहे बहुत दुख पाई, मनुख अंधे ठौर न पाई। बिष्टा का कीड़ा बिष्टा माए सुमाई, हुकम मन्ने सो जन परवान, गुर के शब्द नाम निशान। अरहाओ साजर ते जिना तुर लिख पाया, हर का नाम सदा मन पाया, सतगुर की बाण।

गुर सब्दी हर चेत सुपाए, राम नाम रस रहे अघाए, कोड कुटंत्र के पाप जल जाहे, जीव तुम्हारे हर नाम समाहे, हर की दात हर जीव जाने, गुर के शब्द एहो मन मोलिया, हर गुण दाता नाम खाने रहाओ, भगवे वेश प्रा मुक्त न होए, बहु संजम संत न पावे कोए, गुरमत नाम प्राप्त होए, वडभागी हर पावे सोए, काल में राम नाम वडियाई, गुर पूरे ते पाया जाई, नाम रते सदा सुख पाई, बिन नामे होमे जल जाई।

आमना रतन कोठड़ी गढ़ मंदिर एक लुकानी सब गुरु मेरे ता खोजिए मेरे ज्योति ज्योत सुबानी माधो साधु जन देव मिलाए देखत दर्श पाप सब नस पवित्र परम पद पाए रघाओ पंच चोर मिल लागे नगरिया राम नाम तन हिरिया गुरमत खोज परे तप करे तन साबत रास उबरिया पाखंड परम उपाप कर थाके अंतर माया माया साधु पुरख पुरख पद पाया अज्ञान अंधेर गवाया जगन्नाथ जगदीश गुसाई कर कृपा साध मिलावे नानक सांत होवे मन अंतर नित हिरदे हर गुण गावे बसंत महला चौथा हिंडोल तो वड़ पुरख वड़ अगम गुसाई।

मुन्य सत संगत गुर की हर प्यारी मिल संगत हारस पुन्य रहाओ सत संगत साध दया कर मिल हो शरणागत साधु पान्य हम डुबदे पाथर काढ़ ले हो प्रभ तुम दीन दयाल दुख पान्य हर उस्त तारो अंतर स्वामी सत संगत मिल बुद्ध लान्य हर नामे हम प्रीत लगानी हम हर विटों कुम वान्य जन के पूर मनोरथ हर प्रभ हर नाम देवो हर लान्य जन नानक मन तन अंध पया है गुर मंत्र दियो हर पान्य बसंत महला पंजवा कर पहला दो तुके एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद गुर सेव कर नमस्कार आज हमारे मंगल चार।

प्रभु देह साध संगत मैं इहो विश्राम सदा हृदय जपी प्रतेरो नाम तुझ बिन दूजा कोई नाहे सब तेरो खेल तुझ मैं समाहे।

काट काट काट काट रया समाय, जाके भगत आनंदमय, जाके भगत को नाही खै, जाके भगत को नाही पै, जाके भगत को सदा जय। कौन उपमा तेरी कही जाए, सुखदाता प्रवरयो समाय, नानक जाचे एक दान, कर कृपा मुझे देहो नाम। बसंत मोहल्ला पंजवा, मिल पानी ज्यों हरे बूट, साध संगत त्यों होमे छूट, जैसी दासे तीर मीर, तैसे उदाहरण गुरे पीर, तुम दाते प्रभ देनहार, नेमख नेमख इस नमस्कार, अरहाओ जिसे प्राप्त साध संग, हे जन लागा पार ब्रह्म रंग, ते बंधन ते पय मुक्त, भगत आराधे जोग जुगत, नेत्र संतोखे दर्श पेख, रसना गाए गुण अनेक, तिसना बूझ

तेरा दिया सब जंत खाहे अंतरजामी प्रभ दयाल अपने दास को नदर निहाल कर कृपा मुझ देहु दान जब जीवे नानक तेरो नाम बसंत महला पंजवा आराम रंग सब गए पाप राम जबत कछ नहीं संताप गोविंद जबत सब मिटे अंधेर हार सिमरत कछ नाहे फेर बसंत हमारे राम रंग संत जना सो सदा संग रहाओ संत जनी किया उपदेश जय गोविंद भगत सो तन देश हर भगत हीन उद्यान थान गुर प्रसाद खड़ खड़ पछान हर कीर्तन रस पूग रंग मन पाप करत तू सदा संग।

दान तेरिया संत जिना की बाशो तूर। जप नानक स्वामी सद हजूर, बसंत महला पंजवा सच परमेश्वर नित नवा। गुर कृपा ते नित चवा, प्रभ रखवाले माई बाप। जाके सिमरन नहीं संताप, खसम त्याई एक मन एक पाप।

दुष्ट दूत सा प्रम थके बिन गुर साचे नहीं जाए तुग देद संतर रहे ताए किरत ओ ना का मिटसनाहे कोई अपना बीजिया आप खाहे जन कार खवाला आप सोए जन को पहुंच ना सकस कोए प्रव दास रखे।

तात सहज गृहस्थ बसंत गुरपूरे की सरणी आए कल्याण रूप जप हर घर मंत्र रहाओ। सोग संताप कटे प्रवे आप गुर अपने को नित नित जाप

तेरी सेवा तुझ ते होवे और ना दूजा करता। भगत तेरा सोई तुद पावे जिसनु तू रंग धरता। तू वरदाता तू वरदाना और नहीं को दूजा। तू समर्थ स्वामी मेरा हाँ क्या जाना तेरी पूजा। तेरा मैल अगोचर मेरे प्यारे विघम तेरा है पाना। कहो नानक तय पया द्वारे रख ले वो मुगद अजाना। बसंत हिंडोल महला पंजवा मूल न बूझे आपना सूझे। परम व्यापी अहंग मनी पिता पार ब्रह्म प्राप्त हनी। मुए निस्तारो निर्गुणी रहाओ ओपत परलो प्रवते होवे। ए बिचारी हर जनी नाम प्रभु के जो रंग राते। काल में सुहिए से गनी आवर उपाओ न को सूझे। नानक तरिगे गुर बचनी एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद। राग संत हिंडोल महला नावा साधु इव तन मिथिया जानो। या पीतर जो राम बस्त है साचो ताए पछानो। रघाव इव जग है संपत सुपने की देख कहां ऐडानो।

कज बिगड़ो नाहन अज हो जाग रहाओ। सब सुपने कै यो जग जान, बिन से शिन में साची मान, संग तेरे हर बस्त नीत, निज बासर पजता हे मीत, बार अंत की होए सहाए, कहो नानक गुणता के गाए। बसंत महला पहला, अष्टपदिया कार पहला, दो तुकियां एक ओंकार, सदगुर प्रसाद।

ना पण थज दोत सवार प्रयो सेवो प्रभ प्रेम आधार गुर शब्दी बिगत्यास निवार मोहन मोहे लिया मन मोहे गुर के शब्द पछाना तोहे नानक ठाडे चाह है प्रभु द्वार तेरे नाम संतोखे किरपा तार बसंत महला पहला मन पुल्लो परमस आए जाए अत लुद लुबानो बिखमाए न अस्थिर दिसे एक पाए जो मीन कुंडलिया कंठ पाए मन पुल्लो समझस साच नाए गुरु शब्द विचारे सहज पाए रहाओ मन पुल्लो परमस पावर तार बिल बिरथे चाहे बहु विकार मैग जो फासस कामहार कड़ बंधन बाध्यो शीस मार मन मुग्धो दादर भगत हीन दर पलट सरापी नाम बीन ताके जात न पाती नाम लीन सब दुख सुखाई गुणे बीन मन चले न जाई ठाक राख बिन हरस राखे पत ना साख तू आपे सुरता आप राख हर तारण देखे जाने आप आप पुराए किस कहो जाए गुर मिले बिरथा कहो माए अब गुण छोड़ो गुण कमाए गुर शब्दी राता सच समाए सतगुर मिले मत उत्तम होए मन निर्मल होमे कड्डे तोए सदा मुक्त बंद न सके कोए सदा नाम खाने और न कोए मन हर के भाणे आवे जाए सब में एको केश पहन न जाए सबको वरते हुक्म सुमाए दू सू सब तिसर जाए तू अपुल ना पुलो कदे नाहे गुर शब्द सुनाए मत अगाहे तू मोटो ठाकुर शब्द माहे मन नानक मानिया सच सलाहे

तै लीने भगत राख, तिनका गुण अवगुण ना बीचारे कोए। एवद देख मन लगा सेव, तबीर त्यायो एक रंग, नाम देव हर जीव बसे संग, रविदास ते आए प्रभ अनूप, गुरु नानक देव गोविंद रूप, बसंत महला पंजवा, अनक जन्म प्रमे जून माहे, हार सिमन बिन नरक पाहे, भगत बिहूना खंड खंड, बिन बूझे जम देत डंड, गोविंद पजो

दुख सुख बांधव संसार मन उदरण का साजनाहे पाबंदन नित पौत जागे ईट मीत को सखा नाहे आ बीज आपे ही खाहे जाके तीने होत बेकार ते छोड़ चलिया खिन मह गवार माया मोह मोह भरमिया किरतरे कर करमिया करने हार।

योग ध्यान सन्यासी माते अहमेव तपसी माते तब कह पेव सब मद माते को ना जाग संगी चोर का।

प्रीत कुटुंब संबंधी माया मोह पसारी जिस अंतर प्रीत राम रस नाही दुविधा कर्म बेकारी अंतर रतन पदार्थ हित कौ दुरे न लाल प्यारी नानक गुरमुख नाम अमोलक जुग जुग अंतर तारी।

करत रहत निरहारी, तेन जन की सेवा थाए पई, जिनको किरपाल होवत बनवारी। हर के हो संत भले ते उत्तम भगत भले, जो पावत हर राम मुरारी। जिनका अंग करे मेरा स्वामी, इनकी नानक घर पैज सवारी। सारग मोहल्ला चौथा पड़ताल, जप मन गोविंद हर गोविंद गुणी निदान। सासृड का प्रभु मेरे मन हर बोल, हर पुरख अविनाशी रघाओ। हर का नाम अमृत हर हर हरे, सो पिए जिस राम प्यासी। हर आप दयाल दया कर मिले, जिस सदगुरु सो जन हर हर अमृत नाम चखासी। जो जन सेव है ससदा मेरा हर घरे, इनका सब दुख परम पौ जासी। जन नानक नाम लए ता जीव है, ज्यो चातक जल पीए तृप्तासी। सारग मल्ला चौथा जप मान श्री राम, राम रमत राम सत सत राम। बोलो भैया सद राम राम, राम रव रहा सरबगे रघाओ। राम आपे आप आपे सब करता, राम आपे आप आप सप्त जगे। जिस आप कृपा करे मेरा राम राम राम राय, सो जन राम नाम लिव लागे। राम नाम की उपमा देखो हर संतो, जो भक्त जिना की पत राखे। वेत कलयुग अगे जन नानक का अंग किया, मेरे राम राय दुश्मन दूख गए सब पगे। सारंग महला पंजवा चौपदे कर पहला, एक ओंकार सदगुर प्रसाद। सदगुर मूर्त कौ बल जाओ, अंतर प्यास चातक ज्यो जल की। सबल दर्शन कल पाओ रघाओ, अनाथा को नाथ सर्वप्रद पालक। भगत वशिल हर नाओ, जा को कोई ना राखे प्राणी। तिस तू दे असराओ, नितरिया तर निगतिया गत। निथाविया तू थाओ, दस जाओ ता तू संगे। तेरी कीर्त कर्म कमाओ, एक स्ते लाख लाख।

ते ना ही फुन गर्भ परन भगतन की टहल कुमावत गावत दो काटे ताके जन्म मरन जा को पयो कृपाल बीठला तेन हर हर अजर जरन हर से अगाने तेज सुमाने मुक्ते ना ही जात बरन गुर प्रसाद नानक संतोखे नाम प्रभु जप जाप उदरन सारग महला पंजवा गायो री मैं गुणद मंगल गायो पले संजोग पले दिन अवसर जौ गोपाल री जायो अरहाओ संत चरण मोर लो माथा हमरे मस्तक संत तरे हाथा साधे मंत्र मोर लो मनुआ ताते गत हो त्रै गुनिया भगते दर्श देख नैन।

सदगुर प्रसाद कैसे कहो मुए जी बेदनाई, दर्शन प्यास प्रेप्रीत मनोहर मान ना रहे बहुविध उमकाई रखाओ, चितवन चितवो प्रेप्रीत बैरागी तद पावो हर दर्शाई, जतन करो तो मन नहीं पीरे को है रे संत मिलाई, जब तब संजम पुन सब होम अर्पो सब सुख जाई, एक निमुख प्रेदर्श दिखावे ते संतन कहे बल जाई, करो निहोरा बहुत बेनती सेवो दिन रहनाई, मान अपमान हो सगल त्यागो जो प्रे बात सुनाई, देख चरित्र पई हो बिस्मन गुर सदगुर पुरख मिलाई, प्रवरंग दयाल हुए गृह में पाया जन नानक तप्त बुझाई, सारग महला पंजवा रे मूड़े तू क्यों सिमरत अब नाही, नरक कोर में उर्तव करता नेमक नेमक गुण गाही, अरहाओ आनक जन्म प्रमतो ही आयो मानस जन्म दुर्बाही, गर्व जोन छोड़ जो निकसेओ तव लागो अनठाही, करे बुराई ठगाई दिन रैन निफल कर्म कमाही, कण नाही तो गान लागे ताए ताए दुख पाही, मित्या संग कूड़ लपटायो उर्ज परेओ कुसुमाही, तर मराए जा पकस बगरे तो काल मुखा उड़ जाही, सो मिलया जो प्रभु मिलाया जिस मस्तक लेख लिखाही, कहो नानक तिन जन्म बलिहारी जो अल्प रहे मन माही, सारग महला पंजवा क्यों जीवन प्रीतम बिन माई, जाके बिशरत होत मृत का गृह में रहन न पाई, रघाओ जी ही प्राण को दाता जाके संग सहाई, करो कृपा संतो मुए अपनी प्रा मंगल गुण गाई, चरण संतन के माथे मेरे ऊपर नैनो तूर बाशाई, जे प्रसाद मिल गए प्रभु नानक बल बल ताके हो जाई, सारग महला पंजवा वह अवसर के हो बल जाई, आड़ पर अपना प्रा सिमरन वडभागी हर पाई, रघाओ भलो कबीर दास दासन को ऊतम सैन जननाई, ऊच ते ऊच नाम दे सुमदरसी रविदास ठाकुर बने आई, जियो पिंड तान तान साधन का यो मन संत रे नाई, संत प्रताप परम सब नासे नानक मिले गुसाई, सारग महला पंजवा मनोरथ पूरे

का दुलाभ दे जब होत पुनीता जम की त्रास निवार महापत्ते पादक उतर हर नामा उर तारे जो जो सुने राम जस निर्मल ताका जन्म मरण दुख नासा कहो नानक पाई गे वडपागी मन तन हुए बेगासा सारग महला पंजवा दो पदे कर चौथा एक ओंकार सदगुर प्रसाद मोहन कर आवहो करो जो दरिया मान करो अब महाने बोलो पूल चूक तेरी प्रेत्रिया रखाओ निकट सुनो अर पेखो नाही परम परम दुख परिया होए कृपाल गुर लाए पार दो मिलो लाल मन हरिया एक निमक जे बिसरे स्वामी जानो कोट दिस लख बरिया साध संत की पीर जो पाई तो नानक हर संग मिरिया सारग महला पनवा अब क्या सोचो सोच बिसारी करना सा सोई कर रहा देह नाओ बलिहारी रखाओ चौ दिस फूल रही बिखिया बिख गुर मंत्र मूख गरड़ारी आ दे राख्यो करे अपना ज्यो जल कमला अलपारी हाओ नाही किश मैं क्या हुसा तब तुम ही कल तारी नानक पाग प्रयोगर पाछे राग संत सदकारी सारग महला पंजवा अब मोहे सर्प पा बिरकाते करण कारण समरत स्वामी हर एक स्ते मेरी गाते रगाओ देखे नाना रूप हो रंगा अन नाही तुम पाते दे आधार सर्व को ठाकुर जी प्राण सुख दाते प्रम तो हार जो परे हो तो गुर मिल चरण पराते कहो नानक मैं सर्व सुख पाया ए सुख बेगा नहीं राते सारग महला पंजवा अब मोहे लभ देव है घर टेका गुर दयाल पय सुखदाई अंधले मानक देखा रगाओ काटे अज्ञान तेमर निर्मलिया बुद्ध विगास बबेका ज्यो जल तरंग फेन जल हुई है सेव कु ठाकुर पय एका जय ते उठ्यो तय ही आयो सभी एक एका नानक दृष्ट आयो सब ठाई प्राण पति घर समका सारग महला पंजवा मेरा मान एक ही प्रेम मांगे पेख आयो सब थान देश प्रे रोम ना समसर लागे रहाओ मैं नीरे अनक भोजन बहु बिंजन पेसो दृष्ट ना करे रुचांग हरस चाहे प्रे प्रेम खुटेर ज्यो आल कमला लोभांग गुण निधान मनमोहन लालन सुखदाई सरबांग गुरु नानक प्रापाए पठायो मिलो सखा गल लागे सारग महला पंजवा आप मोरो ठाकुर स्यो मन माना साध कृपाल दयाल पय है यो छेद्यो दुष्ट बिगाना रखाओ तुम ही सुंदर तुम्हें सियाने तुम ही सुगर सुजाना सगल जोर अर ज्ञान ध्यान एक निमकना कीमत जाना तुम ही नायक तुम्हें शत्रपात तुम पूर रहे भगवाना पावो दान संत सेवा हर नानक सद कुरबाना।

सुखदाता होए सगल खलासी रघाव आवर न को सूजे प्रभिन कौ को किस पै जासी ज्यों जानो त्यो राखो ठाकुर सब कुछ तुमगी पासी हाथ दे राखे प्रभ अपने सब जीवन अबनासी कहो नानक मन अंध पया है काटी जम की फासी सारग महला पंजवा मेरो मान

अकाए सूख कनारे, ताब अरोग जब तुम संग बस्तो छुटक तो हुए रवारे, कवन बसेरो दा दासन को

गुलाल लाडले सहज सहज गुण गायो रगाओ गुरबचनात कृपाद कृपा ते बौर नकत हूं तायो रेत उपाद समासु आसन भगत वशल ग्रे पायो नाल विनोद कोड आनंदा सहज सहज समायो करना आप करामन आपे कहो नानक आप आयो सारग महला पंजवा अमृत नाम मने आधारो जिन दिया तिसके कुर्बाने गुरपूरे नमस्कारो रगाओ बुद्धि तृष्णा सहज सुहेला काम क्रोध बिख जारो।

अंधकूप में पतत होत जग संतो करो परम गद मोरी साध संगत नानक पयो मुक्ता दर्शन पेखत पोरी।

निर्वैर संग वैर रचावे हर दरगे ओहारे आद जुगात प्रभु की वड्याई जन की पैज सवारे निरपो भय सगल पो मिटिया चरण कमल आधारे गुर के बचन जप्यो नाओ नान प्रगट पयो संसार सारग मुहला पंजवा हर जन छोड़िया सगला आप ज्यो जानो त्यों रखो गुसाई पेख जीवा प्रताप रखाओ गुर उपदेश साध की संगत बिन सो सगल संताप मित्र सत्तर पेग समत बिचार्यो सगल सुंपाखन जाप तप्त बुझी शीतल आगाने सुन अनहद विस्।

दुख नाठे सुख सहज समाए, आनंद अंध गुण गाया, बां पगर कढ़ लीने अपने, गृह अंध कूबते माया। कहो नानक गुर बंधन काटे, बिशर

विचारे रघाव छोड़ो कपट होए निर्वैरा तो प्रसंग निहारे सचतन वंजो सचतन संचो कबून आवो हारे खात खर्चत किश निखुटत नाही अगन।

साध संगत होवे निर्मल, बौड जोन ना आओ, जियो प्राण आधार तेरा, तू नितावे थाओ। सास सास समाल हर हर, नानक सरबल जाओ, सारग महला पनवा, बैकुंठ गोविंद चरण नित त्याओ। मुगत पदार्थ साधु संगत, अमृत हर का नाओ।

पाई गए सुख विश्राम। सोधत सोधत तत विचार्यो भगत श्रेष्ठ पूरी, कहो नानक एक राम नाम बेन आव सगल विद उरी। सारग महला पंजवा, साचे सदगुरु दा तारा दर्शन देख सगल दुख नासे, चरण कमल बलिहारा रखाओ सत परमेश्वर सत साध जान, निजर हर का नाओ भगत भावनी पार ब्रह्म की, अविनाशी गुण गाओ अगम अगोचर मित नहीं पाईए।

ठाकुर सब ताई निकट बसे सब नेरे रगाओ बंधन तोर राम लेवलाई संत संग बने आई जन्म पदार्थ पयो पुनीता इच्छा सगल पुजाई जाको कृपा करो प्रा मेरे तू हर का जस गावे आठ पैर गोविंद गुण गावे जन नानक सद बल जावे।

प्रभ सेव करत अन सेवा बिरथा काटे काल जा जम आए संघारे प्राणी तब तुमरो कौन होवाल राख लेहो दास अपने को सदा सदा कृपाल सुख निदान नान प्रभ मेरा साध संग तन माल सारग महला पंजवा मन तन राम को व्यवहार प्रेम भगत गुण गावत गीदे होत नहे संसार रगाओ श्रवणी कीर्तन सिमरन स्वामी

चितवो वा अवसर मन माहे होए एकत्र मिलो संत साजन गुण गोविंद नित गाहे रखाओ बिन घर भजन जेते काम करिए तेते बिरते जाहे पूर्ण परमानंद मन मीठो जिस बिन दूसर नाहे जप तप संजम कर्म सुख साधन तुलना कछुए लाहे चरण कमल नानक मन बेदेओ चरण संग सवाहे सार्ग मुहला पनवा मेरा प्रभु संगे अंतर जामी आगे कुशल पाछे खेम सूखा सिमरत नाम स्वामी रगाओ साजन मीत सखाहर मेरे गुण गोपाल हर राया बिसर न जाई निमक हृदय ते पूरे गुरु मिलाया कर कृपा राखे दास अपने जी जंत बस जाके एकाले पूर्ण परमेश्वर पौनी नानक ताके सारग महला पंजवा जाके राम को बल होए सगल मनोरथ पूर्ण ताहू के दुख न व्यापे कोए रहाओ जो जन भगत दास निज प्रभ का सुन जीवा ते सोए उद्म करो दर्शन पेखन कहो कर्म प्राप्त होए गुर प्रसादी दृष्ट निहारो दूसर नाही कोए दान दे नानक अपने कहो चरण जीवा संत तोए

पंजवा त्रिसना जलत बहु प्रकार पूर्ण होत न कतहु बात अंत पर तिहार रगाओ सांत सुख न सहज उपजे ए इस व्यवहार आप पर का कछ न जाने काम क्रोध है जार संसार सागर दुख व्यापे हो।

पेख दयाल अंध सुख पूरन हर रस रप्यो खुमारो रघाव निर्मल पै उजल जस गावत बौर न होवत कारो चरण कम से डोरी राची भेट्यो पुरख अपारो कर गए लीने सर्बस दीने दीपक पयो उजारो नानक नाम रसक बैरागी उले समूहा तारो तारग महला पंजवा मायरी आन सिमर मर जाहे प्या गोविंद जीन को दाता माया संग लपटा हे रघाव नाम सार चले अनमार्ग नरक कोर में पाहे अनक सजाई गणतन आवे गर्भ गर्भ परमाहे से तनवंते से पतवंते

काम क्रोध निंदा पर हरिये काढे साधु के संगमार। जन्म पदार्थ गुरमुख जीतया बौर न जुए हार। आठ पैर प्रभु के गुण गावे

मोह मद मातो सिमरत ना गए हरे रगाओ साध संग जपते नारायण तिनके दुख जरे सबल दे तन ओए जन्मे प्रभ के संग रले चार पदार्थ अष्ट दिशा सिद्ध।

परा पूर्व जिसे लिखया बिरला पाए कोए, रावण गो गोपाल करते नानका सजोए। सारग मोहल्ला पंजवा, हर के नाम की मत सार, हर विसार जो आन राचे मितन सब स्थार रगाओ। साध संगम बज स्वामी पाप हो बतखार, चरनार बिन बसाए हिरदे बौर जन्म ना मार।

मोहे मोहे ली प्रे प्रीत हृदय मेल सरबरी प्रीत दयार प्रसदारी दयार काए आन आन रुचिए हर संग संग खचिए जो साध संग पाए कहो नानक हर त्याय अब रहे जमे मेल सारग महला पंजवा तंचना बो दत करा ओम दान अर्प तरा मन अनक सोच पवित्र करत ना हीरे नाम तुल मन चरण कमल लागे रघाओ चार वेद जेब पने दस अष्ट खष्ट श्रवण सुने नहीं तुल गोविंद नाम तुने मन चरण कमल लागे परत संद सोच चार किरिया कुंट निराहार

कोड कल्प के दुख विनाशन साज दृढ़ाए नंबेरा रखाओ क्रोध निवार जले हो ममता प्रेम सदा नवरंगी अनपो बिसर गए प्रो जात्या हर निर्मायल संगी चंचल मत त्याग पौ पंजन पाया एक शब्द लिव लागी हर अचाख त्रिखा निवारी हर मेल लहे बड़भागी अपरत सिंच परे सुबर सार गुरमत साच निहला मरत नाम रते नेह केवल आजुगा दयाला मोहन मोह लिया मन मोरा बड़े पाग लिव लागी साज विचार केलब दो काटे मन निर्मल अनरागी गहर गंभीर सागर रतनागर अवर नहीं अन पूजा शब्द विचार परम पौ पंजन अवर न जान्या दूजा मनुआ मार निर्मल पा चीनिया हर सरते अदकाई एक से बन में अवर न जाना सदगुर बूझ बुझाई अगम अगोचर अनाथ अजोनी गुरमत एक को जान्या तुबर परे नाही चित डोले मन ही ते मन मानिया गुर प्रसादी।

मन मेरे हर की अकथ कहानी, हरिंदर करे सोई जन पाए, गुरमुख विरले जानी रखाओ, हर गैर गंभीर गुणी गहीर, गुर के शब्द पछानिया, बहुविध कर्म करे पाए दूजे, बिन शब्दे बहुरानिया, हर नाम नावे सोई जन निर्मल, फिर मैला मूल न होई, ना बिना सब जग है मैला, दूजे परम पद खोई, क्या दृढ़ा क्या संग्रह त्यागी, मैं ता बूझ न पाई, होए दयाल कृपा कर हर जियो, नम होए सकाई, सच्चा सदाता कर्म विदाता, जिस पावे ते नाए लाए, गुरु द्वारे सोई बूझे, जिसनु आप जाए, देख विस्माद, जो मन नहीं चेते, आवा गौण संसारा, सतगुर सेवे सोई बूझे, पाए मोह द्वारा, जेंदर सूझे, से कदे ना बिगाड़े, सतगुर बूझ बुझाई, सत संजम करनी किरत कमावे, आन जान रगाई, से दर साचे, साज कमावे, जिन गुरमुख सा

आधार नानक आप सदीव है, पूरा जिस भंडार वड्डा कर सालाही है, अंत न पारावार पौड़ी हर का नाम निधान है, सेवे सुख पाई नाम निरंजन उच्चरा पात स्यों कर जाई, गुरमुख बाणी नाम है नाम हृदय वसाई, मत पंखे रूवस होए।

जत होए ब्राह्मण चुली संतोख की गिरही का सतदान राजे चुली ने आव की पढ़िया सच ध्यान पानी चेतना तो पई मुख पीते तिख जाए पानी पिता जगत का फिर पानी सब खाए पौड़ी नाए सुने सब सिद्ध है रिद पिछे आवे नाए सुने नौनद मिले मन चिंदिया पावे नाए सुने संतोख होए कवला चरण त्यावे नाए सुने सहज उपजे

दुख च जम्मण, दुख मरण, दुख वर्तन संसार, दुख दुख अगे आखिए, पड़ पड़ करे पुकार, दुखिया पंडा खुलिया, सुख ना निकले हो कोए, दुख जियो जलाया, दुखिया चलिया रोए, नानक सिवती रत्या, मन तन हरिया होए, दुख की अग्गी मारिए, पी दुख दारू होए मोहल्ला पहला, नानक दुनिया पस रंग, पसू पस खेहे, पसो पस कमावनी, पी पस परिये देहे, जा जियो विच्चों कड़िये, पसु परे आ जाए, अगे लेखा मंगे, होर दसूनी पाए पौड़ी, नाए सुने सुज संजमो, जम नेड़ न आवे, नाए सुने कड़ चानना, आरेर गुवावे, नाए सुने आप बुझिए, लाहा नाओ पावे, नाए सुने पाप कटिए, निर्मल सच पावे, नानक नाए सुने मुख उजले, नाओ गुरमुख त्यावे, सलोक महला पहला, कर नारायण सभा नाल,

नाय मने सुरत उपज नामे मत होई, नाय मने गुण उच्चर नामे सुख होई, नाय मने प्रम कटी है फिर दुख न होई, नाय मने साराई है पापा मत तोई, नानक पूरे गुरते नाओ मनिए जिन देवे सोई। श्लोक महला पहला। सत्र वेद पुराण पढ़ंता पूकारंता अजाणंता, जा बूझे ता सूझे सोई, नानक आखे कूक ना होई। महला पहला। जा हो तेरा ता सब कुछ मेरा, हो ना ही तू होवे, आपे सगता आपे सुरता, सगती जगत परोवे, आपे भेजे आपे सदे, रचना रच रच वेखे, नानक सच्चा सच्ची नाई, सच पवे तुर लेखे पौड़ी, नाम निरंजन अलख है क्यों लखया जाई, नाम निरंजन नाल है क्यों पाई गे पाई, नाम निरंजन वरतदा अरव्या सब ठाई, गुरपूरे ते पाई है हिरदे दे दिखाई, नानक नदरी कर्म होए गुर मिलिए पाई। श्लोक महला पहला। कल होई कुत्ते मुही खाज हुआ मुरदार, कूड़ बोल बोल पौंकना।

प्रीत होवे लख जीवन, क्या खुशियां क्या चाओ, विछड़िया विस होए विछोड़ा, एक कड़ी मैं जाए जे सो वरिया, मिठा खाजे पी फिर कौड़ा खाए, मिठा खादा चेतन आवे कौड़तन ताए जाए, मिठा कौड़ा दोवे रोग, नानक अंत विगुते भोग, चग चग चखना।

नरक सुर्ग अवतार उत्तम मध्यम जाति जैसी परम पवे संसार अमृत बाणी तत्व खाणी ज्ञान ध्यान विच आई गुरमुख आखी गुरमुख जाति सुरती कर्म त्याई हुक्म साज।

सद्गुर सेवे सो सुख पाए, जिन होमे विचो मारी। नानक पढ़ना गुणना एक नाव है,

लोभ लहर सुध मत गई, सच न लगे प्यार। गुरमुख जिना शब्द मन वसे, दर गए मोह द्वार। नानक आपे मेल लय, आपे बख्शन हार। महला चौथा, नानक जिस बिन कड़ी ना जीवना, विसरे सरय ना बिंद। तेज ज्यों क्यों मन रूसी है, जिस हमारी चिंद। महला चौथा, सावन आया चिमचिमा, हर गुरमुख नाम ते आए। दुख पुख काड़ा सब चुकाए सी, मीहो मुठा शैबर लाए। सब तरत पई हरियावली, आन जम्या बोहल।

कहां नार गर्भस थोरी बात, मंद नाज टका चार गांठी, आइडो टेडो जात गाओ, बहुत प्रताप गांव सो पाए, दो लख टका बरात, दिस चार की करो साहिबी, जैसे बनघर पात, ना को ले आयो यो तन, ना को ले जात, रावण हूं ते अलक शत्र पा, हर के संत सदा सिर पूजो, जो हर नाम जपात, जिन को कृपा करत है गोविंद, ते सत्संग मिलात, मात पिता बंता सुत संपत, अंत न चलत संगात, कहत कबीर आराम पज बौरे,

माया कारण श्रम अत करै, सो माया ले गाडे तरे, आत संचे समझे नहीं मूड, तान तरती तन होए गयो तूड़, काम क्रोध तृष्णा अत जरे, साध संगत कबहू नहीं करे, कहत नाम जो ताची आन, निरपय होए पजिए भगवान, बदो की ना हो माधो मोस्यों, ठाकुर ते जान जनते ठाकुर, खेल परे है तो स्यों रहाओ, आपन देव देवरा आपन, आप लगावे पूजा, जल ते तरंग तरंग ते है जाल, कहन सुन को दूजा, आपे गावे आपे नाचे, आप बजावे तूरा, कहत नाम देव तू मेरो ठाकुर, जन ऊरा तू पूरा, दास अनिम मेरो निज रूप, दर्शन निमख तात्री मोचन, परसत मुक्त करत ग्रे कूप रहाओ, मेरी बंदी भगत छिड़ावे, बंदे भगत न छूटे मोहे, एक समय मोको गए बंदे, तौ फुन मैं पो जवाब न होए, मैं गुण बंद सगल की जीवन, मेरी जीवन मेरे दास, नाम देव जाके जी ऐसी, तैसो ताके प्रेम परगास, सारंग एक ओंकार, सदगुर प्रसाद, तय नर क्या पुराण सुन कीना, आन पावनी भगत नहीं उपजी, भूखे दान ना दीना रखाओ, काम ना बिसरियो, क्रोध ना बिसरियो, लोभ ना छूट्यो देवा, पर निंदा मुक्ति नहीं छूटी, निवर पई सब सेवा, बाट पार कर मूस बिरानो, पेड़ परे अपराधी, जे परलोक जाए अब कीरत, सोई अविद्या साधी, हिंसा तो मते नहीं छूटी, जी दया नहीं पाली, परमानंद साध संगत मिल, कथा पुनीत ना चाली, शाड़ मान हर विमुखन को संग, सारंग महला पंजवा सूरदास, एक ओंकार सदगुर प्रसाद, हर के संग बसे हर लोक, तन मन अर्प सर्वस सब अर्प्यो, अंध सहज तुन चोक रगाओ, दर्शन पेख पय निर्भखई, पाए गए सगले थोक, आन बस त्यों काजना कछुए, सुंदर बदन अलोक, श्याम सुंदर तज आन जो चाहत, जो पुष्टि तन जोक, सूरदास मन प्रभत लीनो, दिनो यो परलोक, सारंग कबीर जियो, एक ओंकार सदगुर प्रसाद, हर बिन कौन सहाई मन का, माल पिता पाई सुध बनता, हित लागो सब फन का, अरहाओ आगे कौकश तुलखा बंद हो, क्या प्रवासा तन का, कां विसासा इस पांडे का, इतन गलागे ठनका, सागल तरम पुन फल पाव हो।

निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सह पंग गुरप्रसाद खाना पीना हसना सौना विसर गया गए मरना खसम विसार खुवारी कीनी त्रिक जीवन नहीं रहे।

जियां अंदर जियो तुही, गुरमुख त्यावे से अमृत पावे, से ही सूचे हो ही। आहिर इस नाम जपोरे प्राणी, मैले खच्चे हो ही। जे ही रुत काया सुख तेह, तेहो जे ही देही। नानक रुत सुहावी साई, बिन नावे रुत के ही। मलार महला पहला।

अकुल निरंजन स्यों सच साची, गुरमत नाम आधार। मुक्त पई बंधन गुर खोले, साबद

गुण माया यन जगत भोलाया, जन्म मरण का सहसा, गुर प्रसादी एको जाने, चूके मनो अंदेसा।

मन की बिद सतगुर ते जाने अणगन लागे साधे घर स्यों ध्यान गुर शब्द रते सदा बैरागी हर दर के साची पावे मान यो मन खेले हुक्म का बद एक खिन मैं दह दिस फिर आवे जा आपे नजर करे हर पर साचा ता यो मन गुरमुख तत्काल वस आवे इस मन की बेद मन हू जाने बूझे शब्द विचार नानक नाम त्याय सदा तू पाव सागर जित पावे पार मलार मोहल्ला तीजा जियो पिंड प्राण सब तिसके घड़कड़ रहे समाई एक बिन मैं अवर न जाना सतगुर दिया बुझाई मन मेरे नाम रहो लिवलाई अदिष्ट अगोचर अपरंपर करता गुर के शब्द घर त्याई रहाओ मन तन पीजे एक लिव लागे सहजे रहे समाई गुर प्रसादी प्रम पौ पागे एक नाम निवलाई गुर बचनी सचकार कमावे गात मत तब ही पाई कोड़ मध्य किसे भुजाए तिन राम नाम लिवलाई जय जय देखा तै एको सोई ए गुरमत बुद पाई मन तन प्राण तरीक्ष आ गए।

माया मोह अज्ञान गुबार, मनमुख मोहे मुग्ध गवार, अनदिन तंदा करत विहाए, मर मर जम्मे मिले सजाए, गुरमुख आराम नाम लिवलाई, कूड़े लालच ना लबटाई, जो किश होवे सहज सुपाए, हर्ष पीवे रसन रसाए।

परे हमरे विच हमरी मैल साधु की तूर गवाई तीर्थ 68 मज्जन नाई सत संगत की तूर परी उड़ने करी तब दुर्मत मैल गवाई रघाव जाहर नवी तपे पाघीर त्याणी केदार थाप्यो महसाई कांसी कृष्ण चिरावत गाऊ मिल हरजन शोभा पाई।

खाओ। अनक प्रकार भोजन बहु किए, बहु व्यंजन मिसटाए। करी पाक साल सोच पवित्रा, हुण लाभो पूघर राय। दुष्ट बिदारे साजन रहस्य, ए मंदर कर अपनाए। जौ ग्रे लाल रंगी यो आया, तौ में सब सुख पाए। संत सभा ओट गुर पूरे, पुरमस्त

होता बिन खीरे रहन न जाई। सार संभाल माता मुख नीरे तब ओ त्रिप्त अगाई। हम बारक पिता प्रवदाता फूले बारक अनक लख बरिया। अनठौर नाही जय जाता रघाओ चंचल मत बारक बपरे की। सर्प अग्न कर मिले माता पिता कंठ लाए राखे। आनंद सहज तब खिले जिसका पिता तू है मेरे स्वामी। तिस बारक पूख कैसी नवनिध नाम निदान गृह तेरे। मन बांछे सो लैसी पिता कृपाल आग्या ए दीनी। बारक मुख मांगे सो देना नानक बारक दर्स प्रभ चाह है। मोहे हृदय बसे निध चरना मलार मोहल्ला पंजवा। सगल विधि जोर आहार करे तजो सगल अंदेसा। कार्य सगल आरंभ्यो कारका ठाकुर का पहारूसा। सुनिए बाजे बाज सुहावी भोर पया मैं प्रेम मुख पेखे। गृह मंगल सोहलावी अराव मनुआ लाए सवारे थाना। पूछो संता जाए खोजत खोजत मैं पाहुन मिलो। भगत करो निव पाए जापरे आए बसे गृह आसन। तब हम मंगल गाया मीत साजन मेरे पए सुहेले। प्रभ पूरा गुरु मिलाया सखी सहेली पए आनंदा। गुर कार्ज हमरे पूरे कहो नानक वर मिलया सुखदाता। छोड़ न जाई दूरे मलार महला पंजवा। राज ते कीट कीट ते सुरपत कर दोख जठर को परते। कृपा निज छोड़ आन को पूजे आत्म काती हरते। हर बिसरत ते दुख दुख मरते अनक बार प्रमे।

राजा राम रमत सुख पायो बरस मेघ सुखदाई रहाओ एक पाल बिसरत नहीं सुख सागर नाम नवे निद पाई उदाउद पयो पूर्ण भावी को पेटे संत सहाई सुख उपजे दुख सगल बिनासे पार ब्रह्म लिवलाई तरयो संसार कठिन पै सागर हर नानक चरण तिहाई मलार महला पंजवा कानखार बरस सगल जग छाया पए किरपाल प्रीतम प्रा मेरे आनंद मंगल सुख पाया रखाओ मिटे कलेस त्रिसन सा बूझी पार ब्रह्मन त्याया साध संग जन्म मरने वारे बौर न कतहू ताया मन तन नाम निरंजन रातो चरण कमल लिवलाया अंगीकार कियो प्रभु अपने नानक दास शरणाया मलार मुहल्ला पंजवा बिशरत क्यों जीवे ओए जीवन किते उलास आस मिल।

प्रातन साधु संग उधारे रखाओ। देव कोल दैंत कोल जाख किन्नर नार सागर उतरे पारे। जो जो भजन करे साधु संग ताके दुख बिदारे। काम क्रोध मां बिखिया रस इनते पए निरारे। दीन दयाल जपे करना मैं नानक सद बलिहारे। मलार महला पंजवा आज मैं बैस्यो हर घाट। नाम रास संजी कर जम स्यो जाओ ना जम कै घाट। रखाओ तार अनुग्रह पार ब्रह्म राखे प्रम के खुले कपाट। बेसुमार साहु प्रापाया ला चरण निध खाट। शरण गई अचुत अवनासी किरवे काढ़े है शाट। काल कलेश मिटे दास।

सेवक पूर्ण भगत चेरानो रहाओ। ए त्योत डोल डोल शरम पायो, तान तान होत बेरानो। लोग दोराए करत ठगियाई, होतो संग न जानो। मृग पंखी मीन दीन नीच, ए संकट फिर आनो। कहो नानक पान प्रवतार हो, साध संगत सुख मानो। मलार महला पंजवां। दुष्ट

दर्श प्यास मेरो मन मोयो, अर पंख लगाए मलीजै रहाओ। खोजत खोजत मार्ग पायो, साधु सेव करी जय। तार अनुग्रह स्वामी मेरे, नाम महारस।

चित आवे, आड़ पैर तेरे रंग राते रहाओ, गावन सुनन सब तेरा पाना, हुकम बूझे सो साच समाना, जप जप जीवे तेरा नाओ, तुझ बिन दूजा नाही थाओ, दोसो करते हुकम मर जाए, पाने बख्स पाने दे सजाए, दुआ सिरिया का करता आप, कुर्बान जाई तेरे प्रताप, तेरी कीमत तू है जाने, तू आपे बूझे सुने आप वखाने।

पैज रखदा आया, नानक बोले तिसका बोलाया। मलार मखला पंजवा गुर सरनाई सगल निधान, साची दरगे पाएगे मान, परंप दुख दर्द सब जाए, साध संग सद हर गुण गाए। मन मेरे गुर पूरा साल आहे, नाम निधान जपो दिन राती, मन चिंदे फल पाए रहाओ। सतगुर जेवड़ अवर ना कोए, गुर पार ब्रह्म परमेश्वर सोए। जन्म मरण दुख ते राखै, माया बिख फिर बौड़ ना चाखै। गुर की महिमा कथन ना जाए, गुर परमेश्वर साचे नाए। सच संजम करनी सब साची, सो मन निर्मल जो गुर संग राची। गुर पूर

हू गंधर्व अपसरा आनंद मंगल रस गावनी नीकी रहाओ तुनत ललत गुनाग अंक पांत बोविध रूप दिखावनी नीकी गिर तार थाल जाल पावन परपुर काट काट लालन शावनी नीकी साध संग रामैया।

होए आनंद सगल भाग रहाओ। संत संगे मन परफड़े मिल मेघ तर सुहाग। कान कोर प्रीत मोर कित चातरक बूंद ओर। ऐसो हर संगे मन मोह त्याग माया तोहो। मिल संत नानक।

मन माही। गारड़ गुर ज्ञान ध्यान गुर बचनी, बिखिया गुरमत जारी। मन तन हेम पै सज पाया।

अंध नहीं सूझे, बदक कर्म कमावे, सदगुर मिले ता सूझस बूझस, सच मन ज्ञान समावे, निर्गुण दे

तनहार जित कर वसै तुहे बिद जान है बीजो मैल न जापै सतगुर बाजो समझ न होवी साब जग दबिया छापै कारण पलाब करे बिर लातो बिन गुर नाम न जापै पाल पंकज मै नाम छड़ाए जे गुर शब्द सुन्यापै एक मूर्ख अंधे मुग्ध गवार एक सतगुर कै पै नाम आधार साची बाणी मीठी अमृत धार जिन पीती तिस मोह द्वार नाम पै पाए हृदय वसाही गुर करणी सच बाणी इंद वरसे तरत सुहावी काट काट जोत समाणी कालर बीजस दुरमत ऐसी निगुरे की नीसाणी सतगुर बाजों कूर अंधारा डूब मुए बिन पाणी जोग जकीनो सो प्रभु रजाए जो तुर लिखया सो मेटना ना जाए हुक्मे बादा कार कमाए एक शब्द राचे सच समाए चौ दिस हुक्म वरते प्रभु तेरा चौ दिस नाम पतालं सामे शब्द वरते प्रभु साचा कर्म मिले बयालं जामन मरणा दीसे सिर उबो खुदया निंद्रा कालं नानक नाम मिले मन पावे साची नदर रसालं मलार मुहल्ला पहला मरण मुक्त गत सार न जाने कंठे बैठी गुर शब्द पछाने तुम कैसे आड़ फाती जाल अलखना जा चेर दे समाल रखाओ एक जी कै जीया खाही जल धरती बूढ़ी जल माही सर्ब जी किए प्रतपानी जब पकड़ी तब ही पछतानी जब गल पास पड़ी अदपारी ऊड़ न साकै पंख पसारी।

मान रे सतगुर सेव समाए, वडे पा गुर पूरा पाया, हर हर नाम त्याए रहाओ, हर अपने भाणे सृष्ट उपाई, हर आपे दे आधार, हर अपने भाणे मन निर्मल किया, हर स्यों लागा प्यार, हर के भाणे सतगुर पेटिया, सब जन्म सवारण हार, वाहो बाणी सत है गुरमुख बूझै कोए, वाह वाह कर प्रसाल आई है तेस जेवड़ अवर न कोए, आपे बगसे मेल लय कर्म प्राप्त होए, साचा साहेब मारो सतगुर दिया दिखाए, अमृत वरसै मन संतोखिए सच रहे लिवलाए, हर के नाए सदा हरियावली फिर सुके ना कुमलाए, बिन सतगुर किने ना पायो मन वेखो को पतियाए, हर कृपा ते सतगुर पाईए भेटे सहज सुपाए, मानमुख परम भुलाया बिन पागा हर तन ना पाए, त्रै गुण सबा तात है पढ़ पढ़ करे विचार, मुक्त कदे ना होवई न पाएन मोह द्वार, बिन सतगुर बंधन ना टुट ही नाम न लगे प्यार, पढ़ पढ़ पंडित मुनि थके वेदा का अभ्यास, हर नाम चेतना आवई न निज कर होवै वास, जमकाल सिरो न उतरै अंतर कपट विनाश, हर नावे नू सब को प्रताप दा विण भागा पाया ना जाए, नदर करे गुर पेटिए हर नाम वसे मन आए, नानक नामे ही पत उपजे हर सोरहां समाए, मलार महला तीजा अष्टपदी

गुरमति शब्द सूर है काम क्रोध जिनी मारिया सच्चे अंदर महल शब्द सवारिया छे भगत तुद पाम दे सच्चे नाए प्यारिया सतगुर सेवन अपना तिना विटो हो वारिया सलोक महला तीजा ऊनव आया वरसे लाए चढ़ी नानक पाने चले कंत कै तो माने सदा रली महला तीजा क्या उठ उठ देखो बपड़े इस मेघे हथ किशनाहे जिन यो मेघ पठाया तिस राखो मन माहे तिसनू मन वसाए सी जाको नदर करे नानक नदरी बारी सब करण पला करे पौड़ी तो हरसदा सरेवी है जे करतना लागे वार आडाने आकाश कर खिन में टाए उसारण हार आपे जगतो पाए कै कुदरत करे विचार मन अगे लेखा मंगिए बहुती होवे मार गुरमुख पासों लेखा निबड़े बगसे सिबत भंडार ओथे हथ ना अपड़े ऊक ना सुनिए पुकार ओथे सतगुर बेली होवे काढ ले अंती वार इना जनता नू होर सेवा नहीं सतगुर सिर करतार।

खंड पताल असंख मैं गणत न होई, तू करता गोविंद तू सृजी तुदय गोई, लख चौरासी मेदनी तुझ ही ते होई। एक राजे खान मलूक कह कहावे कोई, एक सास दावे संच तान दूजे पद खोई, एक दाते एक मंगते सबना सिर सोई, विण नावे बाजारिया भी हावल होई, ऊड़न खुट्टे नानका सच करे सो होई। सलोक मुहला तीजा बाबिया गुणवंती मैल पाया, अगुणवंती दूर अंतर तेरे हर वसै, गुरमुख सदा हजूर।

पौड़ी सच्चा सतगुर सेव सच संभालिया अंत खलोआ आए जे सतगुर अगे कालिया होए न सके जमकाल सच्चा रखवालिया गुरसाखी जोत जगा।

सच्चे शब्द निहालिया, नानक नाम निदान है पूरे गुरदे खालिया। सलोक महला तीजा, वाह भी है हुगम पछाणिया, गुर कै सहज सुपाए, मेघ वरसते दया कर, गूढ़ी शैबर लाए। बाबी के कूक पुकार रह गई, सुख वसिया मन आए। नानक सो साल आई है जे देंदा, सबना जिया रिजक समाए। महला तीजा, चातरक तू ना जान ही, क्या तुद विच तिखा है, किर पीते तिख जाए। दूजे पाए परमया, अमृत जल पल्ले ना पाए, नदर करे जे अपनी ना सतगुर मिले सुपाए। नानक सतगुर ते अमृत जल पाया, सहजे रहा सुमाए। पौड़ी एक वाणखण बैसे जाए, साधना देव ही एक पाला कक्कर पन्न, शीतल जल हेव ही एक पसम चिड़ावे अंग, मैल ना तोव ही एक जटा बिकट बिकराल, कोल कर खोव ही एक नगर फिरे दिन रात, नींद ना सोवगी एक अगन जलावे अंग, आप विगोवगी विणनावे तन श्यार, या कह रोवगी सोहन खसम द्वार, जे सतगुर सेवगी। सलोक महला तीजा, बा बीघा अमृत वेले बोलिया, तां दर्शनी पुकार। मेघे नू फरमान हुआ, वरसो किरपा तार। हौ तिन के बलहारण, जिनी सत रखिया उरतार। नानक नामे सब हरियावली, गुर के शब्द विचार। महला तीजा, बा बीघा इव तेरी तिखा न उतरे, जे सो करे पुकार। नदरी सतगुर पाई है, नदरी उपजे प्यार। नानक साहिब मन वसै, विचों जाए विकार। पौड़ी एक जैनी उजड़ पाए, तुरों खुवाया। तिन मुख नाही नाम, ना तीर्थ नहाया, हत्थी सिर खोहायन पद कराया। उचल रह दिन रात, शब्द ना पाया, तिन जात ना पत ना कर्म, जन्म गवाया। मन जूठे वे जात, जूठा खाया, बिन शब्दे आचार ना किन्ही पाया। गुरमुख ओंकार सच समाया, सलोक महला तीजा। सामण सरसी कामणी, गुर शब्दी विचार। नानक सदा सुहागणी, गुर कै हेत अपार। महला तीजा, सावण दजे गुण बारी, जिस दूजे पाए प्यार। नानक तिर की सार ना जाणई, सब सीगार खुआर। पौड़ी सच्चा अलख अपेयो, हठ ना पतीजई। एक गावे राग परियां, राग ना पीजई। एक नच नच पूरे ताल, भगत ना कीजई। एक अन्न ना खाहे मूर्ख, तिना क्या कीजई। तिसना होई बहुत।

तेह वडाम सत संगत मिल पज राम बाढ़ हो पागम थाम रखाओ जित गृह मंदिर हर होत जास तित कर आन दो आनंद पाज राम राम राम राम नाम गुण गाओ हर प्रीतम उपदेश गुरु गुर सदगुरा सुख होत हर हरे हर हरे हरे पज राम राम राम तब सिष्ट तार हर तुम किरपाल करता सब तू तू तू राम राम राम जन नानको शरणागति द्यो गुरमती पज राम राम राम कानड़ा मोहल्ला चौथा सतगुर चाटो पग चाट जित मिल हर पादर बाट पाज हर रस रस हर गाट हर हो लिखे ललाट रहाओ खड़ कर्म क्रिया कर बहु बो विस्तार सिद्ध साधक जोगिया कर जड़ जटा जड़ जाट कर पेख ना पाइये हर ब्रह्म जोग हर पाइये सत संगती उपदेश गुरु गुर संत जना खोल खोल कपाट तू अपरंपर स्वामी अत अगाहो तू पर पुर रहया जल थले हर एक इको एक एक हर थाट तू जाने साबित बूझे आपे जन नानक के प्रभ काट कटे काट कटे काट हर काट कानड़ा मोहल्ला चौथा जप मन गोविंद माधो हर हर अगम अगाधो मत गुरमत हर प्रभ लादो तोर हो लिखे लादो रघाओ बिख माया संच बहु चिते विकार सुख पाएगे हर फज संत संत संगती मिल सतगुरु गुर साधो जो चोहे पारस मनूर पै कंचन त्यों पत जान मिल संगती सुध होवत गुरमती सुध हद जो काष्ट संग लोहा बो तरता त्यो पापी संग तरे साध साध संगती गुर सतगुरु गुर साधो चार वर्ण चार आश्रम है कोई मिले गुरु गुर नानक तो आप तरह कुल सगल तरा दो कानड़ा मोहल्ला चौथा हर जगावो भगवान जस गावत पाप लहान मत गुरमत सुन जस कान हार हो किरपान रखाओ तेरे जन त्यावे एक मान एक चित ते साधु सुख पावे जप हर हर नाम निधान उस्त करे प्रव तेरिया मेरे साधु साध जना गुर सदगुरु भगवान जिन कै हिरदे तू स्वामी ते सुख बल पावे ते तरे पव सिंध ते भगत हर जान तिन सेवा हम लाए हरे जन नानक के

बल जाओ। कल युग मैं पाया जिन नाओ, कानड़ा मोहल्ला पंजवा, कीर्त प्रभ की गाओ मेरी रसना, अनक बार कर बंदन संतन, ऊहां चरण गोविंद जी के बसना रहाओ, अनक पान कर द्वार न पावो, होए किरपाल ता हर हर त्याव, कोड़ कर्म कर दे न सोदा, साध संगत मैं मन पर बोधा, तृष्ण न बूझी बहु रंग माया, नाम लयत सर्व सुख पाया, पार ब्रह्म जप पय दयाल, कहो नानक तो छूटे जंजाल, कानड़ा मोहल्ला पंजवा, ऐसी मांग गोबिंद ते, तैर संतन की संग साधु का, हर नामा जा परम गते रहाओ, पूजा चरना ठाकुर सरना, तोई कुसल जो प्रभु जी उपरना, सबल होते दुर्लभ देही, जा को सदगुर मया करेही, अज्ञान परम बिन से दुख डेरा, जा के हृदय बसे गुर पैरा।

तरह कर्तग करना मैं अंतर्यामी ज्ञान आठ पैर नानक जस गावे मांगन कौ हरदान कानड़ा मोहल्ला पंजवा कहन कहामन कौ कई केत ऐसो जन बिरलो है सेवक जो तत योग कौ बेत रहाओ दुख नाही सब सुख ही है रे एक एकी नेत बुरा नहीं सब पला ही है रे हार नहीं सब जेत सोग नाही सदा हर की है रे छोड़ नहीं किश लेत कहो नानक जान हार हर हार।

आनंद रंग विनोद हमारे, नामो गावन नाम ते आवन, नाम हमारे प्राण आधार है। हरहाओ नामो ज्ञान नाम इसनाना, हर नाम हमारे कार्य सवार है। हर नामो शोभा नाम बढ़ाई, पौजल विकम नाम हर तार है। अगम पदार्थ लाल अमोला,

सत्संगा आठ निग्रह अतरैत बिटंगा हौ रोग व्यापे चुके न पंगा काम क्रोध आत त्रिसन जरंगा सो मुक्त नानक जिस सतगुर चंगा कानड़ा मोहल्ला पंजवा कार सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद तिख बूझ गई गई मेरे साध जरा पंच भागे चोर सहज सखनो हरे गुण गावती गावती गावती दर्श प्यार रगाओ जैसी करी प्रा मोस्यो मोस्यो ऐसी हो कैसे करो यो तुम्हारे बल बले बल बले बल गई पहले पै संत पाए त्याए त्याए प्रीत लाए प्रवतान तेरो केरो जित जंतन कर विचार अनक दास कीर्त करे तुहारी सोई मिलो जो पावत जन नानक ठाकुर रहो समाए एक तू ही तू ही तू ही कानड़ा मोहल्ला पंजवा कर अठवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद त्यागिए गुमान।

ग्रेसे सुहावी आंगन चैना तोरो री तोरो पांच दूतन स्यों संग तोरो आए ना जाए बसे निज आसन ऊंद कमल बिग सोरो छुटकी होमे सोरो।

ओंकार सदगुर प्रसाद जप मन राम नाम सुख पावे गो ज्यों ज्यों जपे तवे सुख पावे सदगुर।

मुख उजला प्रधान, नानक गुर गोविंद हर, जित मिलघर पाया नाम पौड़ी। तू आपे ही सिद्ध साधको, तू आपे ही जुग जोगिया, तू आपे ही रस रसियड़ा, तू आपे ही भोग भोगिया, तू आपे आप वर्तदा, तू आपे करे सोहोगिया। सत संगत सदगुर तन तनो, तन तन तनो, जित मिलघर बुलग।

हर प्रसज्जन नाम हर मैं मनतन नाम शरीर सब ऐसा गुरमुख पूरिया जन नानक सुन हर तीर पौड़ी हर उत्तम हरिया नाम है हर पुरख निरंजन मौला जो जपदे हर हर दिन सरात तिन सेवे चरण नित कौला नित सार समाले सब जी जंत हर वसे निट सब जौला सो बूझे जिस आ बुझाए सी जिस सदगुर पुरख प्रसौला सब गावो गुण गोविंद हरे गोविंद हरे गोविंद हरे गुण गावत गुणी समोला सलोक महला चौथा सुत्या हर प्रवचेत मान हर सहज समा समाए जन नानक हर हर चाओ मान गुर तुठा मेले माए महला चौथा हर इकस स्थिति पिरहड़ी हर इको मेरे चित जन नानक एक आधार हर प्रभ एक सते गत पत पौड़ी पंचे शब्द वजे मत गुरमत वडभागी अनहद वजया आनंद मूल राम सब देखया गुर शब्दी गोविंद गजया आद जुगाद वेस हर एको मत गुरमत हर प्रभ भजया हर देव हो दान दयाल प्रभ जन राखो हर प्रभ लजया सब धन कहो गुर सदगुरु गुर सदगुरु जित मिलघर पड़दा कजया सलोक महला चौथा भगत सरोवर उछल सुबर परे वहन जिन्ना सदगुर मन्या जन नानक वडभाग लहन महला चौथा हर हर नाम असंख हर हर के गुण कथन ना जाहे हर हर अगम अगाध हर जान केत विद मिले मिलाहे हर हर जस जपत जपंत जा एक तिल नहीं कीमत पाए जन नानक हर अगम प्रभ हर मेल लहो लड़लाए पौड़ी हर अगम अगोचर अगम हर क्यों कर हर दर्शन पिखा किस वखर हुए सो वर्णिए तिस रूप ना रिखा जिस बुझाए आप बुझाए दे सोई जन दिखा सत संगत सदगुर चढ़ साल है जित हर गुण सिखा तन तन सो रसना तन कर तन सो पांदा सदगुरु जित मिल हर लेखा लिखा सलोक महला चौथा हर हर नाम अमृत है हर जपिगे सदगुर पाए हर हर नाम पवित है हर जपत सुनत दुख जाए हर नाम तिनी आराध्या जिन मस्तक लिखिया तुर पाए हर दरगे जन पै नाइयन जिन हर मन वस्या आए जन नानक ते मुख उजले जिन हर सुनिया मन पाए महला चौथा हर हर नाम निधान है गुरमुख पाया जाए जिन तुर मस्तक लिखिया तिन सदगुर मिलिया आए तन मनसी तल होया सांत वसी मन आए नानक हर हर चौंदया सब दाल दे दुख ले जाए पौड़ी हो वारिया तिन को सदा सदा जिन्ना सदगुर मेरा प्यारा देखया तिन को मिलया मेरा सदगुरु जिन को तुर मस्तक लेखया हर अगम ते आया गुरमति तिस रूप नहीं प्रव रेखया गुरभजन ते आया जिन्ना अगम हर ते ठाकुर सेव करल एकया साब कहो मुखो नर नर हरे नर नर हरे नर नर हरे हर लार भगत वसिखया सलोक महला चौथा राम नाम राम रव रहे राम रामो राम रमीत घड़ घड़ आत्म राम है प्रभ खेल कियो रंग रीत हर निट बसे जग जी

उत्तम घर प्रभ नाम है। गुरभजन सुभागे लीता, दुख दाल दिन सबो लह गया। जा नाव गुरु घर दीता, सब सेवो मोहनो, मन मोहनो, जग मोहनो, जिन जगत्यो पाए सबो वस कीता। श्लोक महला चौथा, मन अंतर होम में रोग है। ब्रह्म फूले मनमुख दुर्जना, नानक रोग वन्याय, मिल सदगुर साधु सज्जना। महला चौथा, मन तन ताम सगारवा, जा देखा हर नैने, नानक सो प्रामय मिले। हो जीवा साध सुने पौड़ी, जगन्नाथ जगदीशर करते, अपरंपर पुरख अतोल। हर नाम ते आवो मेरे गुरसिखो, हर उत्तम हर नाम अमोल। जिन त्याया हिरदे दिन सरात, ते मिले नहीं हर रोल। वडभागी संगत मिले, गुर सतगुर पूरा बोल। सब त्यावो नर नारायणो, नारायणो, जित चूका जाम झगड़ चघोल। श्लोक महला चौथा, हर जन हर हर चौंदिया, सर संध्या गावार। नानक हर जन हर ले उबरे, जिन संध्या तिस फिर मार। महला चौथा, अखी प्रेम कसाइया, हर हर नाम पिखन, जे कर दूजा देख दे, जन नानक कढ चन। पौड़ी जल थल मही अल पूरनो, अपरंपर सोई। जी जंद प्रतपाल दा, जो करे सोई। मात पिता सुत प्रात मीत, तिस बिन नहीं कोई। घट घट अंतर रव रहया, जप्यो जन कोई। सगल जपो गोपाल गुण, प्रगट सब लोई। श्लोक महला चौथा, गुरमुख मिले से सजना, हर प्रपाया रंग। जन नानक नाम सलाहे तू, लुड लुड दर गए वंज महला।

सदगुर प्रसाद ऐसो राम राय अंतर जामी, जैसे दर्पण माहे बदन परवानी रगाव, बसे कटा कड लीपना शीपे, बंधन मुक्ता जात ना दिसे, पानी माहे देख मुख जैसा, नामे को स्वामी बीठल ऐसा, निर्भौ निर्वैर अकाल मूर्त, अजूनी सह भंग गुर प्रसाद, रामा राम रामे अंत न पाया, हम बारक प्रदपारे तुमरे, तू बड़ पुरख पिता मेरा माया, अरहाव हर के नाम असंग अगम है, अगम अगम हर राया, गुणी ज्ञानी सुरत भोकिनी, एक तिल ने कीमत पाया, गोविंद गुण गोविंद सद गाव है, गुण गोविंद अंत न पाया, तू अमित अतोल अपरंपर स्वामी, बो जपगे था न पाया, उस्तद करे तुमरी जनमाद हो, गुण गावे हर राया, तुम जल निध हा मीने तुमरे, तेरा अंत न कतहू पाया, जान कहो कृपा करो मसूदन, हर देवो नाम जपाया, मैं मूर्ख अंधले नाम टेक है, जन नानक गुरमुख पाया, कल्याण मोहल्ला चौथा, हर जन गुण गावत हसया, हर घर भगत बनी मत गुरमत, तुर मस्तक प्रभ लिखिया रहाओ, गुर के पाग सिमरो दिन राती, मन हर घर हर बसया, हर घर हर कीर्त जग सारी, घस चंदन जस कसया, हर जन हर घर हर लिवलाई, सब सागत खोज पया, ज्यो किरत संजोग चल्यो नर निंदक, पग नागन छोए जलया, जन के तुम घर राखे स्वामी, तुम जुग जुग जन रखया, कहां पया दायत करीब खीली, सब कर कर चर परया, जेते जी जन प्रव किए, सब कालय मोह ग्रसया, हर जन हर हर हर प्रव राखे, जन नानक सर

जगन्नाथ गुर उपदेशवर नाम ते आयो, सब किल बिख दुख लाथे रखाओ। रसना एक जग गाए न साके, बहु कीजे बहु रसन थे, बार बार खिन पल सब गावे। गुण कह न सके प्रभु तुमन थे, हम बो प्रीत लगी प्रभु स्वामी, हम लोचे प्रभु दिखन थे।

हम पाथर रख बुढ़ थई कल्याण मोहल्ला चौथा हमरी चितवनी घर प्रव जाने और कोई निंद करे घर जन की प्रवता का कहया एक तिल नहीं माने रखाओ और सब त्याग सेवा कर अचुत जो सबसे ऊज ठाकुर भगवान हर सेवा ते कालज होए ना सके चरणी आए पवे हर जन जा को राख ले मेरा स्वामी ताको सुमत दे पैकाने ताको कोई अपर न सके जा की भगत मेरा प्रमाने हर के चोज विडान देख जान जो खोटा खरा एक निमक पछाने ताते जन कौ अंध पया है रिद्ध सुध मिले खोटे पछताने तुम हर दाते समरथ स्वामी एक मांगो तु पासो वरदाने जन नानक कहो हर कृपा कर दीजे सद बसे हृदय मुझे हर चिराने।

प्रभ मोहे कब गल लावें गे रखाओ हम बारक मुगद एयान पिता समझावेंगे सुत खिन खिन पूल बेगार जगत पिद पावेंगे जो हर स्वामी तुम देहो सोई हम पावेंगे मोहे दूजी नाही ठौर जिस पे हम जावेंगे जो हर पावे भगत तिना हर पावेंगे ज्योति ज्योत मिलाए ज्योत रल जावेंगे हर आपे होए किरपाल आप लिवलावेंगे गे

परस निपरस पै साधु जन, जन हर भगवान दिखी जय। सागत सूत बहु गुरजी परया, क्यों करतान तनीजय। तंत सूत केश निकसे नाही, सागत संग ना कीजय। सदगुर साध संगत है निकी, मिर संगत राम रवीजय। अंत रतन जवेहर मान, गुर किरपा ते लीजय। मेरा ठाकुर वड्डा वड्डा है स्वामी।

रामो राम रवीजे, साधु साध साधन नीके, विल साधु हरंग की जय रघाओ। जी जंत सब जग है जेता, मन डोलत डोल करीजे, कृपा कृपा कर साध मिलावो, जग थम मन को।

जात जन मने पूछिए सच कर लिहो बताए, सा जात सा पत है जेहे कर्म कमाए, जन्म मरण दुख काटिए नानक छूट सुनाए, प्रभाती मखला पहला जागत बिनसे मूठो अंडा, गल फाही सिर मारे धंधा, आसा आवे मनसा जाए उर्जी ताणी किशना बसाए, जागस जीवन जागण हारा सुख सागर अमृत भंडारा रखाओ, कहो न बूझे अंध न सूझे भूडी कार कमाई, आपे प्रीत प्रेम परमेश्वर करमी मिले वडाई, दिन दिन आवे तिल तिल शीजे माया मोह कटाई, बिन गुर बूडो ठोर न पावे जब लग दूजी राई, पहनस जिया देख संभाले सुख दो पुरब कमाई, कर्महीन सच पीखिया मांगे नानक मिले वडाई, प्रभाती महला पहला मष्ट करो मूर्ख जा कहिया।

प्रीतम मनमोहन आत्रसलार सगूड़ औरगाव ऊपर कूप गगन पनहारी अमृत पीमनहारा जिसकी रचना शोभित जाने गुरमुख ज्ञान विचारा पसरी किरण रस कमल बेगासे सदकर सूर समाया काल विध्वंस मनसा मनमारी गुर प्रसाद प्रापाया आत्रस रंग चलू ले राती दूजा रंग न कोई नानक रसन रसाए राते रव रहया प्रवसोई पसरी किरण रस कमल बेगासे सदकर सूर समाया काल विध्वंस मनसा मनमारी गुर प्रसाद प्रापाया आत्रस रंग चलू ले राती दूजा रंग न कोई नानक रसन रसाए राते रव रहया प्रवसोई प्रभाती महला पहला बारह मह रावल खब जाव है चौसे मह सन्यासी जोगी कापड़िया सिर खूते।

बनाए बहु रंगी सिद्ध उपाए प्रखेल किया कर कर वेख करे कराए सर्ब जिया नू रिजक दिया कली काल में रव्या राम घाट घाट पूरया प्रभ एको गुरमुख प्रगट हर हर नाम रखाओ गुप्ता नाम वरते विच कल युग कट कट हर भरपूर रहया नाम रतन तिना हिरदे प्रगटया जो गुरसरण आई पज पया इंद्री पंच पंचे वसयाने खिमा संतोख गुरमत पावे तो तन तन हर जनवड़।

तो नरक पर एको शब्द एको प्रवर्त तब एक स्ते उत्पत चल नानक गुरमुख मेल मिलाए गुरमुख हर हर जाए रले।

लेव उन मन नाम लगान, अमृत रस पिया गुर शब्दी, हम नाम मिटो कुर्बान। हमरे जग जीवन हर प्राण, हर उत्तम अंतर पायो, गुरमंत दियो हर कान रखाओ। आभो संत मेरो मेरे पाई, मिल हर हर नाम वखान। कित विद क्यों पाइये प्रभु अपना, मोको करो उपदेश हर दान। सत संगत में हर हर वसया, मेरे संगत हर गुण जान। वड़े भाग सत संगत पाई, गुर सतगुर परस भगवान। गुण गावे प्रभु अगम ठाकुर के, गुण गाए रहे हैरान। जन नानक गौ गुर कृपा धारी, हर नाम दियो खिनदान। प्रभाती महला चौथा, उगवे सूर गुरमुख हर बोले, तब रैन संभाले हर गाल। हमरे प्रभ हम लोच लगाई।

गुण गावत मन होए आनंद, आठ पैर सिमरो भगवंत, जाके सिमरन कर मल जाहे, तिस गुर की हम चरणी पाहे, सुमत देव हो संत प्यारे, सिमरो नाम मोहे निस्तारे रखाओ, जिन गुर कहया मार्ग सीधा, सगल त्याग नाम हर गीदा, तिस गुर कह सदा बल जाइए, हार सिमरन जि गुर ते पाईए, बूढ़ प्राणी जिन गुरे तराया, जिस प्रसाद मोहे नी माया, हलत पलत जिन गुरे सवारिया।

अनद मंगल कल्याण सदा सुख कारज सगला रास तिया रहाओ चरण कमल गुर के मन उठे दुख दर्द प्रम बिरसे झूठे नित उठ गावो प्रभु की बाणी आठ पैर हर सिमरो प्राणी कार बाहर प्रभु सब नीताई तंग सहाई जय हो जाई दुए कर जोड़ करी अरदास सदा जपे नानक गुणतास प्रभाती मोहल्ला पंजवा पार ब्रह्म प्रभ सुगड़ सुजान गुरपुरा पाएगे वडभागी दर्शन को जाएगे कुरबान रखाओ किलभ मेटे सब संतोख नाम आराधन हुआ जोग साध संग हुआ प्रगास चरण कमल मन महे निवास जिन किया तन लिया राख प्रभ पूरा अनाथ का नाथ जिसे निवाजे के पातार पूर्ण कर्मता के आचार गुण गावे नित नित नवे लख चौरासी जोन।

जागरण करे होमे मैल उतार सदा जागे कर अपना रख है पंच सकर काढ है मार मन मेरे गुरमुख नाम ते आए जित मार घर पाईए मन से ही कर्म कमाए रखाओ गुरमुख सह तुन उपजे दुख होमे विच हो जाए हर नामा हर मन वसे है जे हर गुण गाए गुरमती मुख सोने हर रख

कर स्नान तर चक्र बनाए अंतर की माल तब ही ना जाए एत संजम प्रभ किन ही ना पाया भगवती मुद्रा मन मोया माया रहाओ पाप करे पंचा के बस रे तीर्थ नाए कह सब उतरे बौर कुमावे हुए निशंक जंपुर बांध करे कालंक घूंगर बांध

मेरा प्रभ रविया सर बैठा ई रघाव माने हाट माने पाठ माने है पासारी माने बासे नाना भेदी परमत है संसारी गुर के शब्द इहो मन राता दुबदा सह सुमाणी सब हुक्म हुक्म आपे निरपो समत बिचारी जो जन जान पदे पुरखोत्तम ताची अवगत बाणी नामा कहे जग जी मन पाया हिरदे अलख बिडाणी प्रभाती आद जुगाद जुगाद जुगो जुग ताका अंत न जानिया सर्व निरंतर राम रविया राव ऐसा रूप बखानिया गोविंद गाजे शब्द बाजे आनंद रूपी मेरो रामैया रहाओ बावन भीखू बाने भीखे पालते सुख लागला सर्वे आद परमलाद काष्ट चंदन पायला तुम चे पारस हम चे लोहा संगे कंचन पायला तू दयाल रतनलाल नामा साच समायला प्रभाती अकोल पुरख एक चल पाया गड़ गड़ अंतर ब्रह्म लुकाया जी की जोत न जाने कोई तय मैं किया सो मालूम होई रहाओ ज्यों प्रगासया माटी कुंभेओ आप ही करता बीठल देओ जी का बंधन कर्म व्यापे जो किया तो आपे आपे परमत नाम देओ यो जियो चितवे सो लहे अमर होए सद आकुल रहे प्रभाती भगत बेणी जी की एक ओंकार सदगुर प्रसाद तान चंदन मस्तक पाती हृदय अंतर कर तलकाती ठग दिष्ट बग्गा लिव लागा देख बैसनो प्राण मुख भागा कर भगवत बंद चिरामंग क्रूर दृष्टता निस्बादं रहाओ नित प्रत स्नान शरीरं दुह धोती कर्म मुख खीरं हृदय शुरी संदेहानी पर दर्भ हिरन की बानी सिल पूजस चक्र गणेशं निस जागस भगत परवेशं पग नाचस चित अकर्मं ए लंपट नाच अतर्मं मृग आसन तुलसी माला कर उजर तिलक कपाला हृदय कूड़ कंठ रुद्राखं रे लंपट कृष्ण अपाखं जिन आत्म तत् न चीनिया सब भोगट तर्म अभिनिया को बेणी गुरमुख त्यावे बिन सद

अंत बार संग तेरे यह एक जात है। बिखिया बिख जो विसार प्रभ कौ जस ही ए तार नानक जन कै पुकार अवसर विहात है। जय जावंती महला नामा रे मन कौन गद होए है तेरी ए जग में राम नाम सो तो नहीं सुनियो कान बिखे सो अत लुभान मत नाहिन फेरी रहाओ मांस को जन्म ली।

अस्त्र जो मान्यो देहे सो तो तेरो होए गए खेहे, क्यों ना हर को नाम लेहे, मूर्ख नलाज रे आराम भगत ही आन, चाड़ दे तै मन को मान, नानक जन ए बखान।

पुरख भगवान है, भगत वत्सल करुणामय है, घट घट बसंत वासुदेव है, पार ब्रह्म परमेश्वर है, जा चंत नानक कृपाल प्रसादं नहि बिसरंत नहि बिसरंत नारायण है, नहि समर्थं नहि सेवकं न प्रीत परम पुरखोत्तमं तब प्रसाद सिमरते नामं नानक कृपाल हर हर गुरं।

हर हर हरे अनित रचना निर्मोत दानं परापूर्वेण कुंचन्ते महीपते विपरीत बुद्धि अंगमार्त लोक है नानक चिरंकाल दुख भोगते बिरथा अनुग्रह गोविंद है जस सिमरण।

ज्ञानं हम दुख सुखं जुगत निर्मल निर्वायरण दयालं सर्वत्र जिया पंच दोख विवर्जित है भोजनं गोपाल कीर्तनं अल्पमाया।

कंद मूलं बसंते समीप कह रहे ततरगते संसार है नानक सोग हरखं व्यापते छलं शिदरं कोड़ बिघनं अपराधं केल बिख मलं।

रमंत गुण गोविंद नित प्रतय तारण शरण स्वामी रामण सील परमेश्वर है करण कारण समर्थ है दान देत प्रापूर्ण है निराश आस करण सगल अर्थ आले है गुण निधान सिमरंत नानक सगल जाचंत जाचक है दुर्गम स्थान सुगम।

तहंत जनमं नेत नेत कथंत वेद ऊच मूच अपार गोविंद है बसंत साध हृदय अचुत बुझंत नानक बड़ भागी है उदयान बसनं संसारं संबंधी स्वान सियाल खर है बिखम स्थान मन मोह मदरं मां असाध पंच तस्कर है हीत मोह पय परम ब्राह्मणं अंग फांस तीक्षण कठन है पावक तो असाध घोरं अगम तीर नय लंघन है भज साध संग गोपाल नानक हर चरण शरण उदरण कृपा कृपा करंत गोविंद गोपाल है सगलिंग रोग खंडन है सा संगेन गुण रमत नानक शरण पूर्ण परमेश्वर है श्यामलंग मधुर मानुखियं हृदयंग भूम वायरण है निवंत होवंत मिथ्या चेतनंग संत सुवजन है अचेत मूड़ा ना जानंत कटंत सासा नित प्रते छिजंत महासुंदरी काया काल कन्या ग्रास्ते अचंत पुरख कुटंब लीला नेत्यास विख्या विनोद प्रमंत प्रमंत भोजन महारयो शरण नानक करणामय हे जेबे हे रसगे मद्र प्रिया तोयं सत हदं परम बादं अवर्तिथ है सुध अशरण गोविंद दामोदर माधव गर्भंत नारी मदोर मतंग बलवंत बलाद कारण है चरण कमल नय पजंत तरण समान तिग जन्मन है।

सुंदर पुरख विराजत पेख मन बंचला खोजो ताके चरण कहो कद पाई है हर खां सोई ज तन बताए सखी प्रयो पाई है नैन न देखे साध से नैन बेहालिया करन न सुनगी नाद करन मुंद कालिया।

निर्दावे दज होत है, निर्दावे रहे निशंक। जो जन निर्दावे रहे तो गणे इंद्र सो रंक। कबीर पाल समोहा सरवर भरा, पी न सके कोई नीर। भाग बड़े ते पायो तू पर पियो कबीर। कबीर प्रभाते तारे खिसे,

सफल फलंत पीर साधु संग प्राप्ति लिखिया होए ललाट मुक्त पदार्थ पाई है थाक ना अब घट काट कबीर एक घड़ी आदि करी

सुरा पान जो जो प्राणी खाहे तीर्थ वर्त नेम किए ते सबे रसातल जाहे नीचे लोयन कर रखो ले साजन कट माहे सबरग खेलो पीसो किसी लखावो नाहे आठ जाम चौसठ करी।

पुछई तन सुहागण नाव सोहरे पेये कंत की कंत अगम अथा हो नानक सो सुहागणी जो पावे बे परवाह नाती धोती संभही।

साहेब सच्चे वेख बिरहा बिरहा आखिए बिरहा तू सुल्तान फरीदा जे तन भिरो न उपजे तो तन जान मसान फरीदा एस गंदला तरिया खंड लिवाड़ एक राय दे रह गए एक राधी गए उजाड़ फरीदा चार गवाया हंड कह चार

परीदा कोठे मंडप माड़िया एतना लाए चित मिट्टी पई अतोलवी कोई न होसी मित फरीदा मंडप माल न लाए मर्ग स्तानी चित तार साई जाए संभाल जिते ही तो वंजना फरीदा जिन्नी कमी नाए गुण ए कमड़े विसार मत शर्मिंदा थीव ही साई दे दरबार फरीदा साहिब दी कर चाकरी दिल दी लाए परांद दरवेसा नू लोड़िए रुखां दी जी रांद फरीदा काले मैंडे कपड़े काला मैंडा वेस गुण ही परिया मैं फिरा लोक कहे दरवेश तत्ती तोय ना पलवे जेजल टुब्बी दे फरीदा जो डुहागन रब दी चूरेंदी चूरे जां कुआरी ता चाओ विवाही ता मामले फरीदा एहो पछोताओ वत कुआरी ना थीए कलर केरी छपड़ी आए उलथे हंज किंजू बोड़न ना पीवे उड़न संधि डंज हंस उड़ कोदरे पया।

से ती दियो गया, सूला से ती रात, खड़ा पुकारे पातनी, बेड़ा कपरवात, लम्मी लम्मी नदी वह कंधी के रहेत, बेड़े नू कपर क्या करे जे पातन रहे सुचेत, फरीदा गली सो सज्जन वी ही, एक टूडें दी नाल हां, तुखां जो माली ही, कारण तिना मापिरी, फरीदा यो तन पौकना नेतने दुखिए कौन, कन्नी बुझे दे रहा किती वगै पौन, फरीदा रब खजूरी पकियां माखे नई वहन, जो जो वन्ये डीड़ा तो उम्र हाथ

0: निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद सवैये श्री मुख बाक महला पंजवां आदि पुरख करतार करण कारण सब आपे सरब रहो भरपूर सगल घट रहो बेआपे व्याप्त देखिए जगत जाने कौन तेरी गत सर्व की रखिया करे आपे हर पत अविनाशी अवगत आपे आपे उत्पत एक तू ही एक है आन नाही तुम पत हर अंत नाही पारावार कौन है करे विचार जगत पिता है सर्व प्राण को आधार जन नानक भगत दार तुल ब्रह्म समसर एक जी क्या बखाने हां के बल बल बल बल सद बलिहार अमृत प्रवाह सार अतुल भंडार पर परे ही ते परे अपर अपार पर अपनो भावन कर मंत्र ना दूसरो धर ओबद परलो एक नेमक तो कर आन नाही संसार उजियारो निर्मार कोट प्राशित जागे नाम लीगे हर हर जन नानक भगतदार तुल ब्रह्म संसार एक जी क्या बखाने हां के बल बल बल बल सद बलिहार सगल पवन धारे एक ते की ए बिस्तारे पूर है ओ सर्वमय आप है निरारे हर गुण नागी अंत पारे जी जंत सब थारे सगल को दाता एक अलख मुरारे आप ही धारण धारे कुदरत है देखारे वर्ण चेन नाही मुख नाम सारे जन नानक भगत दार तुल ब्रह्म समसर एक जी क्या बखाने हां के बल बल बल बल सद बलिहार सर्व गुण निधानं कीमत न ज्ञानं ध्यानं ऊचे ते ऊचो जा नीजे प्रभ तेरो थानं मन तन तेरो प्राणं एक सूत है जहानं कम उपमा देओ बड़े ते बडानं जाने कौन तेरो पेओ अलख अपार देओ अकल कला है प्रभ सर्व को थानं जन नानक भगत दार तुल ब्रह्म संसार एक जी क्या बखाने हां के बल बल बल बल सद बलिहार निरंकार आकार अशल पूर्ण अविनाशी हरखवंत अनंत रूप निर्मल विगासी गुण गावे बेअंत अंत एक तिल नहीं पासी जा को होए कृपाल सोजन प्रभ तुम्हें मिलासी तन तन ते तन जान जे कृपाल हर हर पयो हर गुरु नानक जिन परसयो छे जन्म मरण धोते रहो सत सत हर सत सत सत्ते सत पणिए दूसर आनना आवर पुरख पौरा तन सुनिए अमृत हर को नाम लयत मन सब सुख पाए जे रसन चाख्यो ते जन तृप्त अघाए जे ठाकर सो प्रसन्न पयो सर संगत ते प्यार हर गुरु नानक जिन परसयो तेन सब कुल कियो उधार सच सभा दीबान सच सच्चे पै तरयो सच्चे तख्त निवास सच तपावस करयो सच सिरजो संसार आप अफुल न फुल्लो रतन नाम अपार कीम न पवे अमुल्लो जे कृपाल होयो गोविंद सर्व सुख तिन हु पाए हर गुरु नानक जिन परसयो ते बौड़ फिर जोन न आए कवन जोग कौन ज्ञान ध्यान कवन विद उस्तत करिए सिद्ध साधक ते तीस कोर तिर कीम न परिये ब्रह्माद कसन काद सिख गुण अंत न पाए आगो गयो नहीं जाए पूर सर्व रहो समाए ये काटी सिलक दयाल प्रभ हे जन लगे भगते हर गुरु नानक जिन परसयो ते एत उत सदा मुगते प्रभ दाताओ दातार परयो जाचक एक सरना मेरे दान संतरेन जे लग पौजल परना बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर पावे देव दर्श मन चाओ भगत हो मन ठहरावे बलयो चिराग अंधियार में सब कल उदरी एक नाम धर्म प्रगट सगल घर पावन में जन नानक गुर पार ब्रह्म सवैये श्री मुख बाक महला पंजवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद काची दे मोहन बांधी सड़ कठोर कुचील कुग्यानी तावत प्रमत रैन नहीं पावत पार ब्रह्म की गत नहीं जानी जो बिन रूप माया बद माता विचरत विकल बडो अभमानी पर थान पर अपवाद नार निंदा यह मीठी जी माए हेतानी बलवंच शब कर त्यो पाव पेखत सुनत प्रवेंतर जामी सील धर्म दया सुच नास्त आयो शरण जी के दानी कारण करण समर्थ श्री धर रख लिहो नानक के स्वामी कीर्त करन सरन मन मोहन जो हुन पाप विदारन कहो हर तारन तरन समरत सबे बेद कुले समूह उदाहरण सो चित चेत अचेत जान स संगत परम अंधेर मोहयो कद तो मूर्त करी तसा पर सिमरन राम नाम रसना संग लो होशो काज अल्प सुख बंधन कोड़ जन्म कहां दुख पाओ सिखिया संत नाम पज नानक राम रंग आत्म स्यो रो रंचक रेत खेद तन निर्मत दुर्लभ दे सुवार तरी खान पान सुधे सुख पुंचत संकट काट बिपत हरी मात पिता भाई अर बंधप बूजन की सब सूझ परी वर्धमान हो दिन प्रतनित आपत निकट बिखम जरी रे गुण हीन दीन माया क्रिम सिमर स्वामी एक करी कर गए लो किरपाल किरपा निध नानक काट प्रम परी रे मन मूस बिला में गर्भत करतब करत महामुगना संपद दोल चोल संग चूलत माया मगन प्रमत खुगना सुध बंता साजन सुख बंधप तास्यो मुह बड़े सो खना बोयो बीज अंग मम अंकर बीत औद करत अगना मृत मजार सारमुख निरखत उंचत पुगत पूख पुखना सिमर गोपाल दयाल सत्संगत नानक जग जानत सुपना एहन गेहन नेना नीता माया मत कहां लो गारो शतरन पतरन चौर न चावर बैती जात हृदय ना बिचारो रतन असवन गज सिंघासन छिन में त्यागत नांग सिधारो सूर्न बीरन मीर न खान संग न को दृढ़ निहारो कोटन ओटन कोस न छोट करत विकार दू कर चारो मित्र ना पुत्र कलत्र साजन साख उल्टत जात बिरग की शारो दीन दयाल पुरख प्रापूरन छिन छिन सिमरो अगम अपारो श्री पदनाथ शरण नानक जान हे भगवंत कृपा करता रहो प्राण मान दान मग जो हुन हीत चीत दे ले ले पारी साजन सैन मी सुद पाई ताहू तेले रखी नरारी धामन पामन कूर कमावन एवद करत औत तन जारी कर्म तर्म संजम सुच नेमा चंचल संग सगल बिदहारी पस पंखी बिरक अस्थावर बोबद जोन प्रम्यो अदपारी खिण पचसा नाम नी सिमरयो दीना नाथ प्राण पसारी खान पान मीठ रस भोजन अंत की बार होत कदकारी नानक संत चरण संग उदरे होर माया मगन चले सब डारी ब्रह मादक शिव छंद मुनीसर रसक रसक ठाकुर गुण गावत इंद्र मुनिंद्र खोजते गोरख तारण गगन आतफुन तावत सिद्ध मानुख देव अर दानव एक दलता को मर मन पावत प्रे प्राप्रीत प्रेम भक्ति हर जनता के दर्श समावत इसे त्याग आन को जाते है मुख दंत रसन सगल कह जावत रे मन मूड सिमर सुख दाता नानक दास तुझे समझावत माया रंग बिरंग करत भ्रम मुख कूप गुबार परयो है एता गब आकाश ना मावत रिष्टा अस्त क्रिम उदर परयो है दैद ताए महा बिखिया कौ परतन छीन अज्ञान हरयो है जो बन बीत जरा रोग रस्यो जम दूतन डन मृत मरयो है अनक जोन संकट नरक पुंचत शासन दुख गर्त गरयो है प्रेम भगत उदरे से नानक कर कृपा संत आप करो है। गुण समूह फल सगल मनोरथ पूर्ण होई आस हमारी। औखद मंत्र तंत्र पर दुखवर सर्व रोग खंडन गुणकारी। काम क्रोध माद मसर तृष्णा बिन सजाए हर नाम उचारी। इसनान दान तपन सुज किरिया चरण कमल हृदय प्रोतारी। सजन मीत सखा हर बंधप जी तान प्राण आधारी। ओढ़ गई स्वामी समर्थ है नानक दास सदा बलिहारी। आवद कट्यो ना जात प्रेम रह चरण कमल संग। दावन बंध्यो ना जात विदे मन दर्श मग। पाप कजरो ना जात अरेओ जन तूर लग। नीर न साक्ष बोर चले घर पंथ पाग। नानक रोग दोख आग मोह छिदे घर नाम खग। उदम कर लागे बो भाती विचरे अनक सात्र बो खटुआ। पसम लगा तीर्थ बो प्रमते सूखम दे बंदे बो जटुआ। बेन घर भजन सगल दो पावत जो प्रेम बढ़ाए सूत के हटुआ। पूजा चक्कर करत सोम पाका अनक पांत फाटे कर थटुआ। सवाईये महले पहले के एक ओंकार सदगुर प्रसाद एक मान पुरख त्याय बरदाता। संत सहार सदा बिखियत ताज चरण ले हृदय बसावो। तो परम गुरु नानक गुण गावो गावो गुण परम गुरु सुख सागर। दुर्त निवारण शब्द सरे गावे गंभीर तीर मसागर। योगी जंगम ध्यान तरे गावे इंद्राद भगत प्रहलादक। आत्मरा जिन जान्यो तब कलश जद गावो गुरु नानक। राज योग जिन मान्यो गावे जिन काद जुगत जोगेसर। हर्ष पूर्ण सर्व कला गावे सनकाद साध सिधाधक। मुन जन गावे अशरशला गावे गुण तोम अटल मंडल वै। भगत पाए रस जान्यो काब काल सुजस गावो गुरु नानक। राज योग जिन मान्यो गावे कपलाद आद जोगेसर। अपरंपर अवतार वरो गावे जम दगन परसरामेसर। कर कुठार रग तेज हरे हो उदो अक्रूर बेदर गुण गावे। सर्वात्म जिन जान्यो काब काल सुजस गावो गुरु नानक। राज योग जिन मान्यो गावे गुण वर्ण चार खड़ दर्शन। ब्रह मादक सिमरंथ गुना गावे गुण शेष सहजे बारस। आद अंतले लाग तुना गावे गुण महादेव बैरागी। जिन ध्यान निरंतर जान्यो काब कर सुजस गावो गुरु नानक। राज योग जिन मान्यो राज योग मान्यो बस्यो निर्वैर हृदंतर। सिट सगल उदरी नाम ले तरयो निरंतर। गुण गावे सनकाद आज जिन काद जुग है लग। तन तन गुर तन जन्म सक्यथ पलो जग। पाताल पुरी जय कार तुन तब जन कल वखाण्यो। हर नाम रसक नानक गुर राज योग तय मान्यो। सजुग तय मान्यो छल्यो बल बावन पायो। त्रेते तय मान्यो राम रघुवंश कहायो। द्वापर कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ कियो। उग्र सैन कौ राज अपहे भगते जन दियो। कल युग प्रमाण नानक गौर अंगद अमर कहायो। श्री गुरु राज अबचल अटल आद पुरख फुरमायो। गुण गावे रविदास भगत जय देव त्रिलोचन। नामा भगत कबीर सदा गावे समलोचन। भगत बेण गुण रवे सहज आत्म रंग माने। योग ध्यान गुर ज्ञान बिना प्रभ अवर ना जाने। सुख देओ प्रीखित गुण रवे गौतम रिख जस गायो। काब कलश जस नानक गुर नित नवतन जग शायो। गुण गावे पायाल भगत ना गाद पोयंगम। महादेव गुण रवे सदा जोगी जत जंगम। गुण गावे मुन व्यास जिन वेद व्याकरण विचार। ब्रह्मा गुण उचरे जिन हुकुम सब सिट सुवारी। ब्रह्मांड खंड पूर्ण ब्रह्म गुण निर्गुण समझाण्यो। जब कल सुजस नानक गुर सहज योग जिन माण्यो। गुण गावे नवनाथ तन गुर सास समायो। मां धाता गुण रवे जेन चक्र वह कहायो। गुण गावे बलराव ਸਬਦ ਪਾਤਾਲ ਬਸੰਤੋ ਭਰਤਰ ਗੁਣ ਉਚਰ ਸਦਾ ਗੁਰ ਸੰਗ ਰਹੰਤੋ ਦੂਰਬਾ ਪਰੂਰੋ ਅੰਗਰ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਇਓ ਕਾਬ ਕਾਲ ਸੁਜਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਕੜ ਕੜ ਸਹਿਜ ਸਮਾਇਓ ਸਵਾਈਏ ਮਹੱਲੇ ਦੂਜੇ ਕੇ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਤਨ ਕਰਤਾ ਕਾਰਨ ਕਰਤਾਰ ਕਰਨ ਸਮਰਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਨ ਨਾਨਕ ਮਸਤਕ ਤੁਮ ਤਰਿਓ ਜਿਨ ਹੱਥ ਤਾਂ ਤਰਿਓ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਸਹਿਜ ਅਮਿਓ ਉਠੋ ਛੱਜ ਸੁਰ ਨਰ ਗਾਣ ਮੁਨ ਬੋਝ ਅਗਾਜ ਮਾਰੋ ਕੰਟਕ ਕਾਲ ਗਰਜ ਤਾਪਤ ਲਈਓ ਬਰਜ ਪੰਚ ਭੂਤ ਏਕ ਕਰ ਰਾਖ ਲੈ ਸਮਾਜ ਜਗ ਜੀਤੋ ਗੁਰਦੁਆਰ ਖੇਲੇ ਸੰਤ ਸਾਰ ਰਾਥ ਉਨ ਮਨ ਲੇਵ ਰਾਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਉ ਕੀਰਤ ਕਲਸਹਾਰ ਸਪਤ ਦੀਪ ਮਝਾਰ ਲੈਣਾ ਜਗਤਰ ਗੁਰ ਪਰਸ ਮੁਰਾਰ ਜਾ ਕੀ ਦਿਸ਼ਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ ਕਾਲ ਖਣ ਉਤਾਰ ਤੇਮਰ ਅਗਿਆਨ ਜਾਗੇ ਦਰਸ ਦੁਆਰ ਓਏ ਜੋ ਸੇਵੇ ਸਬਦ ਸਾਰ ਗਾਖੜੀ ਬਿਕਮਕਾਰ ਤੇ ਨਰ ਪਵ ਉਤਾਰ ਕੀਏ ਨਿਰਭਾਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਹਿਜ ਸਾਰ ਜਾਗੀ ਲੈ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਿਮਰੀ ਭੂ ਸਦੀਵ ਪਰਮ ਪਿਆਰ ਕਉ ਕੀਰਤ ਕਲਸਹਾਰ ਸਪਤ ਦੀਪ ਮਝਾਰ ਲੈਣਾ ਜਗਤਰ ਗੁਰ ਪਰਸ ਮੁਰਾਰ ਤੈ ਤੋ ਦ੍ਰਿੜਿਓ ਨਾਮ ਅਪਾਰ ਬਿਮਲ ਜਾਸ ਬਥਾਰ ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ ਸੋ ਜਾਨ ਜੀਆਂ ਕੋ ਆਧਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਨਕ ਰਾਜਾ ਅਵਤਾਰ ਸਬਦ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰ ਰਹਿ ਜਗਤਰ ਜਲ ਪਦਮ ਵਿਚਾਰ ਕਲਪ ਤਾਰ ਰੋਗ ਵਿਦਾਰ ਸੰਸਾਰ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰ ਆਤਮਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਤੇਰੇ ਏਕ ਲਿਵਤਾਰ ਕਉ ਕੀਰਤ ਕਲਸਹਾਰ ਸਪਤ ਦੀਪ ਮਝਾਰ ਲੈਣਾ ਜਗਤਰ ਗੁਰ ਪਰਸ ਮੁਰਾਰ ਤੈ ਤਾਂ ਹਦਰਤ ਪਾਇਓ ਮਾਨ ਸੇਵਿਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸਾਧ ਅਜਗਰ ਜਿਨ ਕੀਆ ਉਨਮਾਨ ਹਰ ਘਰ ਦਰਸ ਸਮਾਨ ਆਤਮਾਵੰਤ ਗਿਆਨ ਜਾਣੀ ਅਕਲਗਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜਾ ਕੀ ਦਿਸ਼ਟ ਅਚਲ ਠਾਣ ਬਿਮਲ ਬੁੱਧ ਸੁਥਾਨ ਪੈਰ ਸੀਲ ਸੁਨਾਹੋ ਸਖਤ ਬਿਦਾਰ ਕਉ ਕੀਰਤ ਕਲਸਹਾਰ ਸਪਤ ਦੀਪ ਮਝਾਰ ਲੈਣਾ ਜਗਤਰ ਗੁਰ ਪਰਸ ਮੁਰਾਰ ਦ੍ਰਿਟ ਧਰਤ ਤਮ ਹਰਨ ਦੈਨ ਅਗਪਾਪ ਪ੍ਰਨਾਸਨ ਸਬਦ ਸੂਰ ਬਲਵੰਤ ਕਾਮ ਅਰ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਨਾਸਨ ਲੋ ਮੂਵਸ ਕਰਨ ਸਰਨ ਜਾਚਕ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣ ਆਤਮ ਰਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿਣ ਕਹਿਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਲ ਟਾਲਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਲਕ ਸਤ ਲਾਗੇ ਸੋ ਪੈ ਤਰੈ ਗੁਰ ਜਗਤ ਫਿਰਨ ਸੀ ਅੰਗਰੋ ਰਾਜ ਜੋਗ ਲੈਣਾ ਕਰੇ ਸਦਾ ਆਕਲ ਲਿਵ ਰਹਿ ਕਰਨ ਸਿਉ ਇੱਛਾ ਚਾਰ ਹੈ ਦ੍ਰਮਸਪੂਰ ਜਿਉ ਨਿਵੇ ਖਵੇ ਕਸ ਬਿਮਨ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਏ ਤਤ ਜਾਣਿਓ ਸਰਬਗਤ ਅਲਖ ਬਿਡਾਣੀ ਸਹਿਜ ਪਏ ਸੰਚਿਓ ਕਿਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਲ ਬਾਣੀ ਗੁਰਗਮ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੇ ਪਾਇਓ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਰਾਜ ਲਇਓ ਹਰ ਪਰਸਿਓ ਕਲ ਸੁਮੁਲਵੈ ਜਨ ਦਰਸਨ ਲੈਣੇ ਪਇਓ ਮਨ ਵਿਸਾਸ ਪਾਇਓ ਗੈਰ ਗੋ ਹਦਰਥ ਦੀਓ ਗਰਲ ਨਾਲ ਤਨ ਨਠਿਓ ਅਮਿਓ ਅੰਤਰਗਤ ਪੀਓ ਰਿਧ ਵਿਗਾਸ ਜਾਗਿਓ ਅਲਖ ਕਲ ਤਰੀ ਜੁਗੰਤਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਰਵਿਓ ਸਾਮਾਨ ਨਿਰੰਤਰ ਉਦਾਰੋ ਚਿੱਤ ਦਾਰਦ ਹਰਨ ਪੇਖਨ ਤੇ ਕਲਮਲ ਤ੍ਰਸਨ ਸਦ ਰੰਗ ਸਹਿਜ ਕਲ ਉਚਰ ਜਾ ਜੰਪੋ ਲੈਣੇ ਰਸਨ ਨਾਮ ਅਵਖਦ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਅਰ ਨਾਮ ਸਮਾਧ ਸੁਖ ਸਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੋਖ ਰੰਗ ਰਤੋ ਨਾਮ ਸਿਉ ਕਲ ਨਾਮ ਸੁਰ ਨਰੇ ਬੋਹ ਨਾਮ ਪਰਜਨ ਪਾਇਓ ਸਭ ਪ੍ਰਟਿਓ ਰਵ ਲੋਏ ਦਰਸਨ ਪਰਸੇ ਗੁਰੂ ਕੈ ਆੜਸੜ ਮੱਜਨ ਹੋਏ ਸਚ ਤੀਰਥ ਸਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਅਰ ਭੋਜਨ ਭਾਉ ਸਚ ਸਦਾ ਸਚ ਪਾਖੰਤ ਸੋਖ ਸਚ ਪਾਇਓ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਚ ਨਾਮ ਸੰਗਤੀ ਬੋਹ ਜਿਸ ਸਚ ਸੰਜਮ ਵਰਤ ਸਚ ਕਬਜਨ ਕਲ ਵਖਾਣ ਦਰਸਨ ਪਰਸੇ ਗੁਰੂ ਕੈ ਸਚ ਜਨਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਅਮੇਦ ਸੁਭ ਕਰੇ ਹਰੇ ਅਗ ਪਾਪ ਸਕਲ ਮਲ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋ ਮੋਹ ਵਸ ਕਰੇ ਸਭੇ ਬਲ ਸਦਾ ਸੁਖ ਮਨ ਵਸੈ ਦੁਖ ਸੰਸਾਰ ਖੋਵੈ ਗੁਰ ਨਾਮ ਨਦਰੀ ਆਓ ਜਨਮ ਹਮ ਕਾਲਖ ਤੋਵੇ सो कहो टल गुर सेवी है अहे निस सहे सुपाए दर्शन परसे है गुरु के जन्म मरण दुख जाए सवैये महले तीजे के एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद तोई पुरख सेवर सच जाका एक नाम अचल संसार जिन भगत पवजल तारे सिमरो सोई नाम प्रधान चित नाम रसक नानक लैणा थप्यो जेन सर्व सिद्धि कवजन कल सबुधि कीर्त जन अमरदास बिस्तरिया कीर्त रव केरण प्रगट संसार है साग तरोवर मवल सरा उत्तर दक्षिण पूबर पश्चिम जय जय कार्ज पंथ नरा हर नाम रसन गुरमुख बरदायो उल्ट गंग पश्चिम तरिया सोई नाम अशल भगत पवतारण अमरदास गुर को फुरया सिमरे सोई नाम जख अर किन्नर साधक सिद्ध समाधरा सिमरे नखेतर अवर त्रु मंडल नारदाद प्रहलाद बरा ससियर सूर नाम उल्लास है सैल लो जिन उदरिया सोई नाम अशल भगत पवतारण अमरदास गुर को फुरया सोई नाम सिमर नवनाथ निरंजन शेषन काज समुद्रया चौरासी सिद्ध बुद्ध जित राते अमरीक पवजल तरया उदो अक्रूर त्रिलोचन नामा काल कबीर केल बखरया सोई नाम अशल भगत पवतारण अमरदास गुर को फुरया तित नाम लागते तीस त्यावे जति तपी सुरमन वसया सोई नाम सिमर गंगे पितामह चरण चित अमृत रसया तित नाम गुरु गंभीर गुरु मत सदकर संग उदरिया सोई नाम अशल भगत पवतारण अमरदास गुर को फुरया नाम केत संसार किरण सुर तरसख उत्तर दक्षिण पुब जेस पश्चिम जस पख जमत उसके अथ जित नाम हरदे निवास सुन नल गण गंधर्व छे दर्शन असस पलो प्रसिद्ध तेजो तनो कल जोड़ कर त्यायो तोई नाम भगत फौजल हरण गुर अमरदास तय पायो नाम त्यावे देव ते तीस हर साधक सिद्ध नर नाम खंड ब्रह्मंड तारे ते नाम समाध्यो हर कसोक समकर सगारे नाम स्रोमन सर्वमय भगत रगे लेवतार तोई नाम पदार्थ अमर गुर उस दियो करतार सत सूरो सील बलवंत सत पाए संगत सगन गरु मत निर्वय लीना ये तीर जो तुर तवल तुजा छेद बैकुंठ बीना परसे संत प्यार ये करता रे संयोग सगुरु सेव सुख पायो अमर गुर कीतो जोग नाम नावन नाम रस खान अर पूजन नाम रस सदा चाहे मुख मिष्ट बाणी तन सदगुर सेवयो जिस पसाए गद अगम जानी कोल समूह समुद्र पायो नाम निवास सक्यथ जन्म कल उच्चर गुर परस्यो अमर प्रगास बाज कर दायण सिद्ध सनमुख मुख जो वै हृद बसे बावांग जो तीन लोकांतर मोह हृदय बसे अकहियो होरा तिनही जातो मुखो भगत उच्चर अमर गुर इतरंग रातो मस्तक निशान सचो कर्म कल जोड़ कर त्यायो परस्यो गुरु सदगुर तिलक सर्व इच्छ तिन पायो चरण त परस के अथ चरण गुर अमर पवल रह हाथा परस के अथ हथ लगे गुर अमर पै जीता परस के अथ जी गुर अमर पणिजे नैन ता परस के अथ नैन गुर अमर पिखिजे श्रवण ता परस के अथ श्रवण गुर अमर सुनिजे सक्यत सो हियो जित ही बसे गुर अमरदास ने जगत पेत सक्यत सो सिर जालब पणे जो सिर नवे गुर अमर नित तेरार दुख ने भुख तेरार ने तनो कहिए तेरार सुख न हुए तेरार से अंत न लइए तेरार सेव न करे तेरार से सह सुमपे तेरार दुलीचे बह तेरार उथप बिथप सुख लह तेनार संसार में अपए पट रिप मदते सकिया तेनार जालब पणे गुर अमरदासो प्रसन्न जेह तय पढ़ो एक मन तरयो एक तार एक पछाणियों ਨੈਣ ਬੈਣ ਮੋਹਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਠਾਏ ਨਾ ਜਾਣਿਓ ਸੁਭਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਖ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਮੈ ਲੀਣੋ ਤੀਸ ਇੱਕ ਕਰ ਪੰਚ ਸਿੱਧ ਪੈ ਤੀਸ ਨਾ ਕੀਣੋ ਇੱਕੋ ਜੇ ਲਾਖ ਲੱਖੋ ਅਲੱਖ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰ ਵਰਣਿਓ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਜਾਲਵ ਪਣੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਲੋੜੈ ਇੱਕ ਮੰਨਿਓ ਜੇ ਮਤ ਗਹੀ ਜੈ ਦੇਵ ਜੇ ਮਤ ਨਾਮੇ ਸੰਮਾਣੀ ਜੇ ਮਾਤਰ ਲੋਚਨ ਚਿੱਤ ਭਗਤ ਕੰਬੀਰ ਹੈ ਜਾਣੀ ਰੁਕ ਮੰਗਦ ਕਰਤੂਤ ਆਰਾਮ ਜਪੋ ਨਿਰਪਾਈ ਅਮਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਰਨ ਗੋਬਿੰਦ ਗਦ ਪਾਈ ਤੈ ਲੋਭ ਕ੍ਰੋਧ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤਜੀ ਸੁਮਤ ਜਲ ਜਾਣੀ ਜੁਗਤ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਨਿਜ ਭਗਤ ਹੈ ਦੇਖ ਦਰਸ ਪਾਵੋ ਮੁਕਤ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀ ਹੈ ਪੋਮ ਪਾਤਕ ਬਿਨਾਸੈ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀ ਹੈ ਸਿਧ ਸਾਧਕ ਆਸਾਸ ਹੈ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਲਈਐ ਪਉ ਮੁਕੇ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀ ਹੈ ਅਪਾਉ ਲੱਭੈ ਗਉ ਚੁੱਕੈ ਇੱਕ ਬਿਨ ਦੁਗਣ ਜੋਤੋ ਰਹੇ ਜਾ ਸੁਮੰਤਰ ਮਾਨ ਮੈਲ ਹੈ ਜਾਲ ਪਾ ਪਦਾਰਥ ਇਤੜੇ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਡਿੱਠੈ ਮਿਲੈ ਸੱਚ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਤੋ ਦ੍ਰਿੜ ਨਾਨਕ ਸੰਗ੍ਰਹਿਓ ਤਾਤੇ ਅੰਗਦ ਲੈਣਾ ਪ੍ਰਗਟ ਤਾ ਚਰਣੇ ਲਿਵ ਰਹਿਓ ਤਿਤ ਗੁਲ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਆਸਾ ਨਿਵਾਸ ਤਾਸ ਗੁਣ ਕਮਣ ਵਖਾਣੋ ਜੋ ਗੁਣ ਅਲਖ ਅਗੰਮ ਤਿਨੇ ਗੁਣ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੋ ਵੇਥੋ ਵਿਧਾਤੇ ਨਿਰਮਾਇਓ ਸਭ ਸੰਗਤ ਕੁਲ ਉਧਰਣ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕੀਰਤ ਕਹੇ ਤਰਾਗੇ ਤਰਾਗੇ ਤੋ ਪਾ ਸਰਣ
1: ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰ

तुझ पास साध संगत हो तको तेरे हुकम पावे निशान तो करो साहिब की सेवा जब गुर देखे शुभ दिष्ट नाम करता मुख मेवा अगम अलख कारण पुरख जो फुरमावे सो कहो गुर अमरदास कारण करण जिव तू रख तिव रहो पिखे के गुर ज्ञान अर ध्यान तत स्यों तत मिलावे साचे सच जानिए एक चित है लिवलावे काम क्रोध बस करे

जंपो गुण बेमल सुजन जन केरे आमे नाम जा को फुरिया। इन सदगुर से शब्द रस पाया नाम निरंजन उर तरिया हर नाम रसक गोविंद गुण गाहक त्याग तत् संत सरे। कब काल ठकर हर दास तने गुर रामदास सार अपर परे छुड़त प्रवाह अमे अमरा पद अमृत सरोवर सद परया। ते पीवे संत करे मन मज्जन खुब जिनो सेवा करिया तिन पाओ निवार अनपय पद दीना शब्द मात्र ते उदर तरे। कब काल ठगर हर दास तने गुर रामदास सार अपर परे सदगुर मत गूढ़ बिमल सत्संगत आत्म रंग चिलूल पया। जाग्या मन कवल सहज प्रकाशया अपय निरंजन करे लहा सदगुर दयाल हर नाम दृढ़ाया तिस प्रसाद फल पंच करे। कब काल ठगर हर दास तने गुर रामदास सार अपर परे आन पो उन्मान अगले लागी पारस फेटिया सहज करे। सदगुर प्रसाद परम पद पाया भगत पाए पंडार परे मिट्या जिन मात मरण पो भागा चित लागा संतोख सरे। कब काल ठकर हर दास तने गुर रामदास सार अपार परे अपार परे पायो अपार निध अंतर तारयो दो पंजन आत्म प्रबोध मन तत् विचारयो सदा चाहे हर पाए प्रेम रसया पे जाने। सदगुर कै प्रसाद सहज से तीरंग माने नानक प्रसाद अंगद सुमत गुर अमर अमर वरतायो। गुर रामदास कल उच्चरै तै अटल अमर पद पायो संतोख सरोवर बस अमे रस रसन प्रकाश मिलत सा उपजै

सदगुर प्रमाण बिद न सिरयो जग जस दूर बजायो। गुर रामदास कल उचरै तै अपाए अमर पद पायो। जग जितौ सदगुर प्रमाण मन एक तिहायो। तन तन सदगुर अमरदास जिन नाम दिरड़ायो। नाम रिद नाम निधान रिद सिता की दासी। तै सरोवर मिलयो पुरख भेट्यो अविनासी। आदले भगत जित लग तरे सो गुर नाम दिरड़ायो। गुर रामदास कल उचरै तै हर प्रेम पदार्थ पायो। प्रेम भगत प्रवाह प्रीत पुबली ना हुटै। सदगुर शब्द अथाहो अमे थारा रस गुटै। मत माता संतोख पिता सर सहज समायो। आजो नी संभवयो जगत गुर भजन तरायो। अवगत अगोचर अपरपार मन गुर शब्द वसायो। गुर रामदास कल उचरै तै जगत्यो धारण पायो। जगत्यो धारण नव निधान

सदगुर नाम एक लेमन जपे दृढ़, तिन जन दुख पाप कहो कत होवे जियो। तारण तरण खिन मातर जाको दृष्ट तारे, सदृद विचारे काम क्रोध खोवे जियो। जीन सबन दाता अगम ज्ञान बखियाता, अहिंस ध्यान थावे पलक ना सोवे जियो। जाको देखत दृदर जावे, नाम सो निधान पावे, गुरमुख ज्ञान दुर्मत मैल धोवे जियो। सतगुर नाम एक लिवन जपे दृढ़, तिन जन दुख पाप कहो कत होवे जियो। धर्म कर्म पूरे सतगुर पाई है, जा की सेवा सिद्ध।

की सेव सेव सिद्ध साधक तोर असुर गण तरे ते तीस गुर बचन सुन कन रे सुन तरे ते संत हित भगत गुर गुर करे तरे उपरे लाद गुर मिलत मुन जन रे तरे नार दास संकाद हर गुरमुखे तरह एक नाम लग तजो रस अन रे दास बेंत कहे नाम गुरमुख लहे गुरु गोर गुरु गोर गुरु जप मन रे श्री गुरु साहेब सभी ऊपर करी कृपा सहयुग जन त्रू पर श्री प्रहलाद भगत उधरियं हस्त कमल माथे पर तरियं अलख रूप जी लखिया ना जाई साधक सिद्ध सगल सरनाई गुर के बचन सत जी धारो मानस जन्म दे निस्तारो गुर जहाज खेवट गुरु गुर बिन तरिया ना कोए गुर प्रसाद प्रापाई है गुर बिन मुक्त ना होए गुर नानक निकट बसे बनवारी ते लैणा ताप जोत जग तारी लैणे पंथ धर्म का किया अमरदास पल्ले को दिया ते श्री रामदास थोड़ी सिर थप्यो हर का नाम अखय निध अप्यो अप्यो हर नाम अखय निध चो जुग गुर सेवा कर फल लईं बंधे जो चरण शरण सुख पावे परमानंद गुरमुख कहियं प्रतख दे पार ब्रह्म स्वामी आद रूपोखण परण सतगुर गुरसेव अलागत जाकी श्री रामदास तारण तरण जे अमृत बजन बाणी साधु जन जपे करब चित चाओ आनंद नित मंगल गुर दर्शन सबल संसार संसार सबल गंगा गुर दर्शन परसन परम पवित्र गते जीते जम लोक पत जे प्राणी हर जन शिव गुर ज्ञान रते रघुवंश तिलक सुंदर दशरथ घर मुर बंचे जाकी शरण सतगुर गुर सेव अला कद जाकी श्री रामदास तारण तरण संसार अगम सागर तुलखा हर नाम गुरु मुख पाया जग जन मरण पगा ए आई ए प्रतीत प्रतीत ही आई जिन जन कहे तिन को पदवी उच पई तज माया मोह लोभ अर लाल काम क्रोध की वृथा गई अब लोकया ब्रह्म परम सब छुटकया दिव्य दृष्ट कारण करण सतगुर गुर सेव अलागत जाकी श्री रामदास तारण तरण प्रताप सदा गुर का घट घट प्रगास पया जस जन कहे एक पढ़े सुने गावे प्रभाते करे स्नान स्नान करे प्रभात सुधमान गुर पूजा विद सहित करं कं चिंतन होए परस पारस को ज्योत स्वरूपी ध्यान तरं जग जीवन जगन्नाथ जल थल महे रहया पूर बोविद वर्णं सद गुर गुर सेव अलागत जाकी श्री रामदास तारण तरण जिनो बात निचल तू जानी ते जीव काल ते बचा तिन तरयो समुद्र रुद्र खिन एक मह जल हर बिंब जुगत जाग रचा कुंडलनी सुरजी स संगत परमानंद गुरु मुख मचा श्री गुरु साहेब सभी ऊपर मन भय क्रम सेविये सच्चा वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो कमल नयन मधुर बयन कोड सैन संग सोभ कहत मां जसोद जिसै दही पाद खाए जियो देख रूप आतनूप मोह महा मग पई किंकनी शब्द चंतकार खेल पाए जियो काल कलम हुक्म हाथ कौ कौन मेड़ सके ईस बम ज्ञान ध्यान हरथ हीए चाहे जियो सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तुही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो आराम नाम परम धाम शुद्ध बुद्ध निरीकार बेसुमार सरबर को कहे जियो सुथर चित भगत हित पेग तरयो हर नागस हरयो नख बदार जियो संक चक्कर गदा पद्म आप आप कियो शदम अपरंपर पार ब्रह्म लखे कौन ताहे जियो सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तुही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो पीर बसन कुंद दसन प्रिया सिद कंठ मार मुकट सीस मोर पंख चाहे जियो बेवजीर बड़े तीर
ਧਰਮ ਅੰਗ ਅਲਖ ਅਗਮ ਖੇਲ ਕੀਆ ਆਪਣੇ ਉਸ਼ਾਏ ਜੀਓ ਆਕਥ ਕਥਾ ਕਥੀ ਨਾ ਜਾਏ ਤੀਨ ਲੋਕ ਰਹੇ ਆਸਮਾਏ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਰੂਪ ਤਰਿਓ ਸਹਨ ਕੈ ਸਾਏ ਜੀਓ ਸਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੂਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿ ਜੀਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ ਬਲੇ ਛਲਨ ਸਬਲ ਮਲਨ ਭਗਤ ਫਲਨ ਕਾਂ ਕੁਵਰ ਨੇਕਲੰਕ ਬਜੀ ਡੰਕ ਚੜ੍ਹੂ ਦਲ ਰਵਿੰਦ ਜੀਓ ਰਾਮ ਰਾਵਣ ਦੁਰਤ ਦਵਣ ਸਗਲ ਪਵਣ ਕੁਸਰ ਕਰਨ ਸਰਬ ਭੂਤ ਆਪ ਹੀ ਦੇਵਾਦ ਦੇਵ ਸਹਿਸ ਮੁਖ ਫਨਿੰਦ ਜੀਓ ਜਰਮ ਕਰਮ ਮਸ਼ ਕਸ਼ ਹੋ ਬਰਾਹ ਯਮਨਾ ਕੇ ਕੂਲ ਖੇਲ ਖੇਲਿਓ ਜਿਨ ਗਿੰਦ ਜੀਓ ਨਾਮ ਸਾਰ ਹੀ ਏ ਧਾਰ ਤਜਕਾਰ ਮਨ ਗਏ ਅੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਤਿ ਜੀਓ ਹੁਰ ਕਿਆ ਮਾਨ ਨਿਜ ਨਿਧਾਨ ਸਚ ਜਾਨ ਮੰਤਰ ਇਹ ਨਿਸ ਬਸਰ ਹੋਏ ਕਲਿਆਨ ਲਹਿ ਪਰਮ ਗਤ ਜੀਓ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਜਨ ਜਨ ਸੁਛਾੜ ਤੋਹ ਹੋਮੇ ਕਾ ਫੰਦ ਕਾਟ ਸਾਧ ਸੰਗ ਰਤ ਜੀਓ।

सदकार मन गए अंध, श्री गुरु श्री गुरु श्री गुरु सत जियो, सेवक कहे भरपूर जुग जुग, वाहगुरु तेरा सब सदका, निरंकार प्रसदा सलामत, कहे न सके को तू कद का, ब्रह्मा विष्णु सिरे ते अगणत, तिनको मोह भया मन मत का, 84 लख जोन उपाई, रिजक दिया सबहु कौ तद का, सेवक कहे भरपूर जुग जुग, वाहगुरु तेरा सब सदका, वाहो वाहो का बड़ा तमाशा, आपे हसे आप ही चितवे, आपे चंद सूर परगासा, आपे जाल आपे थल थमन, आपे किया कड़कड़ बासा, आपे नर आपे फुन नारी, आपे सार आप ही पासा, गुरमुख संगत सबे विचार हो, वाहो वाहो का बड़ा तमाशा, किया खेल बड़ मेल तमाशा, वाहेगुरु तेरी सब रचना, तो जल थल गगन पयाल पूर रहया, अमृत ते मीठे जाके बचना, माने ब्रह्माद क्रुद्राधक, काल का काल निरंजन जचना, गुर प्रसाद पाईगे परमार्थ, तत्संगत स्थिती मन खजना, किया खेल बड़ मेल तमाशा, वाहगुरु तेरी सब रचना, अगम अनंत अनाद, आज कोई न जाने, शिव ब्रंतर ध्यान, नित्य जिस वेद बखाने, निरंकार निर्वैर, अवर नहीं दूसर कोई, पंजन गण समत, तरन तारन प्रसोई, नाना प्रकार जिन जग कियो, जन मथरा रसना रसे, श्री सत नाम करता पुरख, गुरु रामदास, चित्ते बसे, गुरु समरथ गए करिया त्रोव, बुद्ध सुमत सुमारन कहो, हुन त्रम तुजा फैरंत सदा, अग पुंज तरंग निवारण कहो, मथुरा जन जान कई जी साच, तो और कछु ना विचारन कहो, हर ना भूत बड़ो कल मैं, अव सागर पार उतारन कहो, संत की सत संगत संग,

भाग पले उनके मन इच्छित ही फल पावत है। रब के सुध को तिन त्रास कहा जो चरण गुरु चित लावत है। निर्मल नाम सुधा पर पूर्ण शब्द तरंग प्रगट दिन आगर। गैर गंभीर अथा अत बड़ सुबर सदा सभ्यद रतनागर। संत मराल करे कंतूहल तिन जम त्रास मिट्यो दुख कागर। कल जुग दुर्त दूर कर बे कौ दर्शन गुरु सगल सुख सागर। जाको मन ध्यान तरे फिरत सगल जोग कवक को पावे आत्म प्रगास कहो। वेद बाणी सहित बिरंजस गावे जाको शिव मन गए न तजात कबलास कहो। जाको योगी जति सिद्ध साधक अनेक ताप जटा जूट पेख किए फिरत उदास कहो। सो तिन सब गुरु सुख पाए कृपा धारी जी नाम की बड़ाई दई। गुरु रामदास को नाम निधान ध्यान अंतरगत तेज पुंज ते लोक प्रगस। देखत दर्श पटक परम भजत दुख परहर सुख सहज बिगस। सेवक सिख सदा अत लुभत आल समूह जो कुसुम सुबासे। वैद्यमान गुर आप थप्यो थेर ताचो तख्त गुरु रामदास। तार्यो संसार माया मद मोहित अमृत नाम दियो सुमरत। हुन कीर्तवंत सदा सुख संपत रिदर सिद्ध न छोड़े सत। दान बड़ो अतवंत महाबल सेवक दास कयो यो तथ। ताहे का प्रवाह काहू की जाके बसीस तरयो गुरगत। तीन पवन पर पूर रहो सोई अपन सरस कियो न जगत कोई। अपन आप ही उपायो सुर नर असुर अंत नहीं पायो। पायो नी अंत सुरे असुरे नर गण गंधर्व खो जंत फिरे। अविनाशी अचल अजो नी संभव पुरखोत्तम अपार परे। करण कारण सुमरत सदा सोई सर्व जी मन त्यायो। श्री गुरु रामदास जयो जय जग में तय घर परम पद पायो। सदगुरु नानक भगत करी एक मान तन मन तन गोबिंद दियो। अंगद अनंत मूर्त निज तारी अगम ज्ञान रस रस्यो हीयो। गुर अमरदास करतार कियो वस वाहो वाहो कर त्यायो। श्री गुरु रामदास जयो जय जग में।

अवतार जय मसरा जगतारन को अवतार बनायो जप्यो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो काल समुद्र पय रूप प्रट हर नाम उदाहरण बसे संत जिस दे दुख दरिद्र निवारण निर्मल पेख अपार तास बिन अवर न कोई मान भजन जानियो पयो ते समसर सोई तरण गागन नव खंड मै जो तरूपी रहो पर पान मसरा कज पेद रही गुर अर्जन प्रतख हर अजय गंग जल अटल शिव संगत सब नहावे नित पुराण बांचिए वेद ब्रह्मा मुख गावे अजय चवर सिर टुले नाम अमृत मुख लियो गुर अर्जन सिर शतर आप परमेश्वर दियो मेरे नानक अंगद अमर गुर गुर रामदास हर पै गयो हर वंश जगत जस संचरयो तो कवन कहे श्री गुरु मोयो देवपुरी मैं गयो आप।

पीतर कंपे काटे सो पाप तिन नरों के गुर रामदास जिन पायो छत्र सिंहासन पृथ्वी गुर अर्जन को दे आयो। एक ओंकार

का तान फिटक फिटका कोड़ बदियां सदा सदा अभमान पाए एते जाहे वीसर नानका एक नाम सा बुद्धि जाली है एक रह तत् ज्ञान माथे जो तुर लिखया सो मेट न सके कोए नानक जो लिखया सो वर्तदा सो बूझे जिसनु नजर होए जिन्नी नाम सारिया कूड़े लालच लग तंदा माया मोहनी अंतर तसना अग जिन्ना वेल ना तुंबड़ी माया ठगे ठग मनमुख बन चलाई है ना मिली वग साग आप उलाए पुलिये आपे मेल मिलाए नानक गुरमुख छुटी है जे चले सदगुर पाए साला की सालाना ही सच्चा साला है नानक सच्चा एक दर बीबा पर हर आग नानक जय जय मैं फिरो तह ते सच्चा सोए जय देखा ते एक है गुरमुख प्रगट होए दुख विसारण शब्द है जे मन मसाए कोए गुर कृपा ते मन वसे कर्म प्राप्त होए नानक हो करते खप मुए खून लखे संख सदगुर मिले सो उबरे साचे शब्द अलंक जिन्ना सदगुर एक मन सेवया तीन जन लागो पाए गुर शब्दी हर मन वसे माया की पुख जाए सेजन निर्मल उजले जे गुरमुख नाम समाए नानक होर पतसाइया कूड़िया नाम रते पातशाह जो पुरखे घर भगती नार है अत लोचे भगती पाए और सालने सवार दी खटस मीठे पाए त्यो बाणी भगत सलाह दे हर नामे चित लाए मन तन तन आगे रखया सिर वेचया गुर आगे जाए पै भगती भगत बलोच दे प्रलोचा पूर मिलाए हर प्रावे प्रभाव है चित खादे तिवताए सतगुर के भाणे जो चले तिवता से हर गुण गाए तन तन कल जुग नानका जे चले सतगुर पाए सतगुरु ना सेवयो शब्द ना रखियो उर तार तिग तिना का जीवया कित आए संसार गुरमति पौ मन पवे ता हरस लगे प्यार नाव मिले तुर लिखया जन नानक पार उतार माया मोह जग परमिया कर मुझसे खबर न होए काम क्रोध में घिर लया मन मुख अंधा लोए ज्ञान खड़ग पंच दूत संघारे गुरमत जागे सोए नाम रतन प्रगासया मन तन निर्मल होए नाम हीन नगटे फिरे बिन नावे भय रोए नानक जो तुर करते लिखया सो मेट न सके कोए गुरमुख हर तन खटया गुर के शब्द विचार ना पदार्थ पाया अतुट परे पंडार हर गुरबाणी उच्चर है अंत न पारावार नानक सब कारण करता करे वेखे सृजनहार गुरमुख अंतर सहज है मन चढ़या दसवें आकाश इथे ऊंग ना पुख है हर अमृत नाम सुखवास नानक दुख सुख व्याप्त नहीं जिथे आत्म राम प्रगास काम क्रोध का चोलड़ा सब गले आए पाए एक उपजे एक बिन सजावे हुक्मे आवे जाए जमन मरण न चुकई रंग लगा दूजे पाए बंधन बंद पवाईयन करना कछु न जाए जिनको कृपा तारियन तिना सतगुर मिलिया आए सतगुर मिले उल्टी पई मर जीव्या सहज सुपाए नानक भगती रत्या हर हर नाम सुमाए मन मुख चंचल मत है अंतर बहुत चित्रा।

पाए, मनमुख सेती संग करे, मोह कालख दाग लगाए, मोह काले तिन लोभिया जसन जन्म गवाए, सत संगत हर मेल प्रभ हर नाम वसै मन आए, जन्म मरण की मल उतरे जन नानक हर गुण गाए, तुर हर प्रभ करत लिखया सो मिटना ना जाए, जियो पिंड सब तिसदा प्रतपाल करे हर राय, चुगल निंदक भुखे रुल मोए,

जिन्ना अंतर हर सुरत नाही विच होमे कर्म कमाम दे सब धर्म राए कै जाही गुरमुख हछे निर्मले गुर के शब्द सुपहाय ओना मैल पतंग न लगई जे चलन सदगुर पाए मनमुख झूठ न उतरै जे सो तोवन पाए नानक गुरमुख मेलियन गुर के अंक समाए बुरा करे सो केहा सिजै अपने रोह आपे ही दजै मनमुख कमला रगड़ै लुजै गुरमुख होए तेस सब के सुजै नानक गुरमुख मन स्यों लुजै जिन्ना सतगुर पुरख न सेवे हो अवदना की तो विचार ओए मानस।

जे आन दिन रहे लिवलाए, जिन्ना प्री प्यार बिन दर्शन क्यों तृप्ती है, नानक मिले सो पाए, गुरमुख एव मन रहसी है, जिन्ना प्री प्यार क्यों जीवन पिर बहारे, जा सो देखने अपना नानक थीवन पी हरे, जिन्ना गुरमुख अंदर ने हो तै प्रीतम सच्चे लाया, राती अत डे हो नानक प्रेम समाया, गुरमुख सच्ची आस की जिद प्रीतम सच्चा पाई है, आन देना रह आनंद नानक सहज समाई है।

संग दीपक के थाप कालंका कुंतल औरामा कामल कुसुम चंपक के नामा गौरा औ कनरा कल्याणा अष्ट पुत्र दीपक के जाना सब मेल